তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমার প্রতিমা নড়ি।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। इस समय दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

मोहब्बत वाला अपनियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान।

मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हर रे में तेरे

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तुम मुझसे बात

0: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
1: मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो

झूठा शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्य नगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
3: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
3: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
3: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अट्टल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: और जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
3: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओ, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओ, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती है। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
4: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर

0: तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
1: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो?
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया,

0: तुमने
1: मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानते, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
2: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे।
2: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
0: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, हा? बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ, मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुना, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
0: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर।

यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और अन्य ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत 26,000 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18,907 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साथ योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को पीएम जनमन योजना के तहत वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और RAC के जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 1,10,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट को लेकर हुई है। इसके अलावा अवैध हूटर, लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और वाहनों की बनावट में अवैध फेर बदल करने वालों पर भी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है। अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को ERP प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही ये बैंक राजस्थान का पहला ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित समितियां डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई हैं। केंद्र सरकार की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत अजमेर और ब्यावर जिले की इन समितियों को ऑनलाइन किया गया है। इस नई डिजिटल प्रणाली से किसानों को फसल प्रबंधन, बीज और उर्वरक वितरण सहित अन्य वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। भरतपुर में आज खेत बचाओ अभियान के तहत महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में निदेशक विजय वीर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर में रेल निकुंज पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। जगतपुरा स्थित रेल निकुंज परिसर में बनाए गए इस पॉली क्लिनिक का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहाँ मरीजों को एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद OPD के साथ साथ डे केयर, फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डेंटल जैसी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल खाद्य योग और जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय किया है। खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान जंग लगे टूटे हुए चाकू या किसी अन्य प्रकार के अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पनिहारी।

0: परिहार कार्यक्रम सुनाड़ी सब बहनों नो थोड़ी आप ही रेडियो सखी तृप्ति भाटिया और
1: टीना रा घना घना
0: रोम रोम। टीना बहन रोम रोम। और देखो माहौल कलेवर मौसम सब कुछ बदले पे हो है नहीं, क्योंकि हणोरे टाइम में की है सब नो ठा है कि आवन आड़ो योग दिवस, तो 15 तारीख रे बाद यूं लगे कि जो दिवाली को कर आवे तो 4-6 दिन पहले तो आपरे बितनो बीजी सब शुरू हो जावे। कुआई हणो सब जगह देखे तो योग री चर्चा, योग री चर्चा के भाई की कर जाओ। थोनो सबसे बढ़िया एक बात बताओ, अब की बार जो थीम रखी नी जिके रो मतलब ए है कि एजिंग में भी आप रो ख्याल रखना, मतलब बढ़ती उम्र में भी खुद ना संभालना, खुद री केवट करनी। और क्योंकि आप और भारत में नहीं काफी लोग युवा आजकल जागरूक हो गया है कि भी मैं योग कर दे मन स्वास्थ्य चाहिए,
1: सही बात है।
0: लेकिन जो को बड़ी उम्र लोग है यानी कि जो 50 या वो उसको मत साड़ा, वो गाँव में हमें की स्थिति होगी कि ना तो गाँव गाँव रहा ना वो शहर बढ़िया, तो उम्र भी शरीर में जरूर पहले जितनी स्वस्थता कुनी रहे। तो उन लोगों ने बढ़ती उम्र में आप लोग को ध्यान रखना है, और ला रहे गवर्नमेंट एक योजना चला रही है कि एक शहर में या एक गांव में ऐडा ठिकाने रे मोए पूरे शहर नो बांट दियो गए। जो आप लोग जैसलमेर है तो किलो है, पूनम स्टेडियम में हर कॉलोनी अंचल में कोई ना कोई गवर्नमेंट अधिकारी और डॉक्टरों ने नियुक्ति कर दी है। तो ये जगह पूरी व्यवस्था है, थोड़ा इसे जाए योग कराने क्योंकि पहले तो किए तो शहर में भी तीन जगह रखता। हमें सरकार ने समझ में आया ये कि आप एक घरों ने छोड़ सारा लोग एक जगह में थे को नहीं आ पावे, तो वो जितने सारे लोगों ने बैठ एक जगह कराओ था वो लोगों ने सब जगह भेजना शुरू कर दिए ताकि। और बहुत बढ़िया बात है कि बढ़ती उम्र के साथ जब अवस्था बढ़े तो आप उबरे मोए भी ए नहीं समझे हमें 50 उम्र हो गई हमें तो गोदा दुख से आपो के स्वीकार कर दे।
1: सही बात,
0: योग वो चीज है जो को शरीर और मन ब्योर मत कौन करे, हमें तो मोरे गोदा दुख से तो थोड़ा दुख से और जो थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ होते नहीं तो थोड़े मन ए कौन सोचे इन लोगों को ठीक हो जाए, मन उनमें कंफर्टेबल हो जाते ए दुख से ठीक है। बच्चा जो अपनी बात नहीं तो अपन उठा मैं तो यहाँ कर से तो टापा डिटा हो जाए कि मनों को कब नाड़ो को नहीं।
1: सही बात है,
0: आप शरीर की आप बात सुनना करे।
1: अच्छा,
0: तो जज अगर आपन लगे कि अंसर ज्योति कम रही पाई
1: अच्छा।
0: तो उसके बारे में सोचना कि मुझे अंश कमजोर रही हम की प्राणायाम करो चथे ये बारे में सवाल कर सो तो दिमाग थोड़ा आइडिया दे से
1: अच्छा।
0: और आप इम्प्लीमेंट कर सो।
1: सही बात,
0: तो तीना मैंने थोड़ा की लगे कि यार टीम हर बार से कुछ अलग तो आप कौन भी बहुत है।
1: देखो सत्यगन यह तो बहुत ही बढ़िया बात है और हूँ तो खुद आप सखियों ने भी यह कहना चाहिए कि अपन जिस सुधी को चीज बढ़िया मिले है वो ले लेनी चाहिए है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आज रो देखो आप कार्यक्रम है हमें आज 15 तारीख 21 तारीख नो योग दिवस है पर तृप्ति बहन एड़ा भी पर सब 18 तारीख नो पर सबसे बड़ी बात है तृप्ति बहन कि आप घरे देखो काम काज करें आप देखो योग शुरू से आप सामने लतो आप दिनचर्या में आप ऋषि मुनि और की करता था कि वो सब आप घरेलू कार्यों में भी आप योग घूमते रहे ताकि अपन अलग से कुछ नहीं करना पड़े। पर हमें कि अपन हर काम हमें आप लारे तो को नहीं जा सको कि आप गोबर गोणियो पच्छा गतो बैठ के कपड़ा धोवो बर्तन मोजो बैठ के झाड़ू पोछा करो नहीं, लेकिन आप आज जब आप बहनों से मुखाते भो तो देखो हूँ भी कोई अच्छो मौको हो तो मनो बुनावनो बढ़िया लगे
0: जी
1: हमें थे ये थायो
0: जी
1: तो थो तो खुद योग गुरु हो योग गुरु तो हूँ तो आप दैनिक दिनचर्या में जो काम करें तो वो बताओ कि आप क्या करना चाहिए जिके सो अपरी सखियों भी लाभ उठावे और बेड़ो बेड़ो हूँ तो लाभ उठाई थी उठाई क्योंकि घनी बार एड़ू हुई कि आप घर का जो काम करें वे में भी अपरी जो है पोस्चर सही को नहीं हुए ना तो वे सो भी अपरी तकलीफ बढ़िया करे और कई प्राणायाम सो अपन अच्छी ठीक है, अपनी बॉडी जो है बढ़िया रहे हो
0: जावे नी, मतलब गागर में आप सागर को कर बने
1: है नी,
0: थोड़ो कण से फायदो घणो है। ए होई जी परफेक्ट लुगाई वाली बात
1: सही
0: है जी। आप है तो जे एड़ो की साग एड़ी चीज बना जे, जो कद्दू रो साग बना जे तो बेपा कद्दू इकल ला जे सही भाव पड़ जे, तो एक रो गिफ्ट ने कालो की दूध नु पीरो बना ले तो
1: सही,
0: तो कौन एक में भी निवर जावे और लगे वैरायटी अलग है।
1: ताकि टबर भी राजी, टबर
0: राजी हो जावे,
1: मायक
0: राजी, टबरों ने मायक उन्होंने एक चीज चाहिए उन्हें दिखना चाहिए कि तो मेहनत करी है। उन अगर थे तो एक बढ़िया बनाए भी घटेरी शाही सब्जी लगाया अभी घंटा तो कैसे बनाया कि तो साग रोटी तो चावल तो पास्ता रहता बने हमें जो चार चीजें दिक्कत तो उन्होंने संतुष्टि उसे ये कौन चीज तो हाथी का बताओ ना दिक्कत नहीं वो भी जगह से चाहिए कहा बताइयों कौन बढ़िया ठीक है। तो टीना बहन जो जो तो आदेश है कि आप योग रही क्योंकि 15 तारीख से बाद आप माहौल आई जाए और हर जगह आप आदेश मिले क्योंकि अपनो आप मन के चल जे कि बहनों भाई प्रोग्राम सुने
1: बिल्कुल
0: और जुको सुन से 10 बातों तो 4 बातों दिमाग में उतर से और बे नाम ली जाम ऊपर
1: आके बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: तो टीना बहन देखो सबसे पहले जो तो बात की हो तो जो शुरुआत करें कि प्राचीन आप पूरे जीवन में कुछ न कुछ चीजें होती है जो योग से जरूरी होती है
1: बिल्कुल।

मेरी बात है थोड़ी, आजकल आपको को नहीं कर सकते। देखो पहली बात तो की कि आबो हवा, अगर हवा में जहर है तो थोड़े शरीर में जाते हैं, फेफड़ा फिल्टर है, कितो फिल्टर करते हैं, है नहीं? एक पूरी फिल्टर भी म्याद होया करे, आप घरों में फिल्टर देखिए नहीं, एक म्याद रे बात पूरी भी सफाई चाहिए। हमें तो सफाई नहीं करा तो दूजू आगे आओ तो जाते हैं, हालत आप शरीर भी है। तो टीना बहन शुरुआत में की होती, अगे आप साकले उठते ही डोकरियों में देखो, भले हमारी बहु घर में झाड़ू पोछा बढ़िया करे पर डोकरियां उड़ते पहले ही बुआरी से। तो उन्हें इसको कहा कि उठो रोनी, हाथ में लो बुआरी, औंगण खड़ा कृष्ण मुरारी, इतने सफाई करो कृष्ण मुरारी बाहर टूबाए, सफाई करो तो घर में आवे। तो वो आप लोग काम करता, और तुम थे आपो जो को कर्म कर जे नी, अगर वो कर्म ना आपो दिमाग से भेड़ो कर जे तो वो डबल लाभ दे। बुआरी खूने खोच रहे थे आपो सिर्फ ओ को नहीं फेंक दे, घर ही कौन कर जाए, आपा दिमाग रे भेड़ी कर दे के रात रे जो खूने खोचरो में पड़ी हो है। हाँ। या कवे के रात नो बड़ी आप रे नेगेटिव सेंस में ले जावे कि रात रो आई, रात रो की किया, रात रो खुला वाल मत रखो, रात रो नाखून मत काटो, रात वे मत करो, सही नहीं? रात रो बड़ो आप रे कि भाई तुम रात नो सोनती से सुगमता से निकालो, तो कभी रात रो जे को एड़ो ओड़ो आयो हो, कुछ छेड़ो लपछेड़ो आयो हो, तो उठने पहले बुआरो फेरो कि घर टबर मन उठे तो पहले पहले बुआरो फेरो झाड़ झट्टा घर तो रवो नहीं करो, एक आप सोच रही। दूसरी बात अगे होता था कच्चा घर, तो खूने खोचरों में कोई ना कोई जीव जंतु आ जाता था कच्चे घरों में, तेरे को नवी बात को नंती तो वो नौकी लग तो घर को हम करने से पहले बुआ रही, क्योंकि मोरे खुद रे देखो लुंडियों में जो खूने खोचरे में बैठी होते टाइम एक बिच्छू वे जो खूनों में अपन कुंठ रात रुके छुआ गहरे रूप में आ गई, तो पहले बुआ रही। तो देखो हणो जो आपको एक योग में आसन कर जी मलासन, ठीक है? मलासन अंग्रेजी कोई पॉटी पोज, इंडियन टाइप से भारतीय लहजे में मल त्याग करना। वो कभी मैं जितना योग सिखाया मैं सबसे बड़ी है कमी देखी है कि आजकल का बच्चा है कभी गंदा है नहीं, क्योंकि जन्म होते वो जो को पॉटी लाइक सीट देखी अलग से बाजार में लिया करी चुको या इंडियन टॉयलेट है जो नहीं करा, तो यह बहुत जरूरी है करना, क्योंकि ये इतना सारा लाभ है हमें। अगर थोड़ा हानियों गिनाओ नहीं बन रही, पहले तो आपको नहीं बच्चों से शुरू कर दिए कि मोरी ये बैठने की आदत को नहीं तो मैं स्थिरता को ना आवे। आध्यात्मिक रूप से जुड़ो तो मूलाधार चक्र बिल्कुल डिसबैलेंस हो जावे, क्योंकि जब आप 44 में बैठ जाए तो मूलाधार धरती रहे मैक्सिमम संपर्क में रहे अर्थ रो सिद्धांत की ग्रेविटी, ठीक है? वो थोड़ी चीजों ना आपके तरफ खींचे तो कितना भी हाइट में जो ग्रेविटी तो बहुत ज्यादा वे जैसे मलासन में बैठो थोड़े पंजा जमीन में स्पर्श करी टिकन वाजे पंजों को स्वाभाविक रूप से जोर लगावे। अर्थ रो एक बीजो भी सिद्धांत है जैसे धक्को देसो थोड़ा सौ में पुश बैक करते एनर्जी पच्ची नोक से, फिर कोई भी जगह जमीन में दबाए देखो हाथ में जोर आते वो एनर्जी है, वो में धक्को देते सोनो सौ में एनर्जी मिले, पगों से धक्को दे काफ मसल जिकन आप पिंडली हो यहाँ मत एनर्जी आवे ए ताकतवर बने, ए ताकतवर बन चुकी रे पेट बढ़िया साफ वे, और अलावा शुगर की तकलीफ हो रही एक कमी आ जा रही, शुगर और खतरों कम हो जा रही, ठीक है? तो यह बहुत जरूरी है। तो पिंडलियों मजबूत करने वास्ते मलासन बहुत जरूरी है, स्थिरता वास्ते मूलाधार वास्ते। हमें बच्चा मलासन बैठ सुन सके अगे तो लुगाया झाड़ू मतलब बुआरी झाड़ू अलग हुई बुआरी अलग हुई, ठीक है? छोटी बुआरी होती थी, बड़े जो फूल झाड़ू जिकन थे आजकल कोई वो न पकड़ के थे सिर्फ खड़े खड़े झाड़ू लगा हुए अगली भी तय को नहीं बुआरी भी छोटी थोड़ा बैठ के ही कदना पड़े हमें थे, अगर थोड़े कितो छोटो कितो बड़ो डे रहे थे रोज अगर बैठ के मलासन की पोजिशन में कपड़ों ने भेड़ा करके कपड़ा भी गंदा नहीं ले अगर से बुआ रोज फेर दे तो बताओ दिमाग री घर री शुद्धि और थोड़ा आसन रो कम हो जाते। हमें तो अपने योगा रो टाइम नहीं है कोई बात नहीं कि रोज बुआरी फेर दी पर फूल झाड़ू मत लाया बुआरी फेर दिया, ठीक है? ऐ करने बात हम अपने आप महसूस होते खजूर झाड़ू ऐ करण तो थोड़ा अपने आप महसूस होते कि हमें थे अपने आप पोचो भी लगा सको। पोचोर में समस्या की गोडोर है तो वो तो आप भाग की चर्चा करता हूँ, अगर ते स्वस्थ हो तो बुआरी फेरना पोचो भी थोड़ा कौन लगाई जी चलो कौ माड़ी आवे कोई बात नहीं। पूजा रो जो घर वेचना पूजा रो आड़ो वे ओ जगह हमें कह रहे ऊंचे भित्तो मतलब घोड़ा थोड़ी जो रंधोनी है रसोई रसोई घर रो आप खुद ना आप पोचो लगाओ, क्योंकि जो भी सफाई कर्मचारी आप हाउस हेल्पर अगर घर आवे भी है आप कुंठा लारे कह रहे घर तो आइए आप कुंठ जो नहाए तो बढ़िया होती है पर फिर भी वो जो रस्तों को आइए तो देखो अगे जब बाहर से आप घर में घुसा तो चौके में कौन लगा सकता है हाथ धोता करता कपड़ा भीजा तो आपको बाहर लो भी कौन सुनाए लाख अच्छी साफ सुथरी है पर बहुतों
भक्ति भारत के

0: अस्तित्व आई है, आप उनको के में क्या भर दें, क्योंकि शरीर में कपड़ों में से असंख्य जीव लगे।
1: बिल्कुल,
0: जब दो साकले बुरी थोड़े घरे आओगे दिन गुते आती हो से तो गड़ियों में तो मिट्टी गंदी की धूल गई है, जैसे मैं बताई जो कूड़ धूड़ भाटा तो ये तो बच कौन सके, वो मिट्टी का कण होने थोड़ी जस्ते में घुसता है। ये वास्ते अच्छी बात है कि पूरे घरों से करवाओ, डागोड़ कराओ, गड़ियों खुतराओ, रसोई में पोछा जैसे खुद लगा सुने और नियम की बनाओ गोडा कौन की तरह धीरे धीरे लगाओ, पोछे लगाओ, एक रसोई में पोछे लगाओ और एक साकले बुआरी फिरो। अगर तेरे मलासन सिद्ध हो गए तो उनको थोड़े अद्धे से अधिक कौम है, क्योंकि आगे के लोग झाड़ू बुआरी करता खाड़िया नीचे होता, सिंह के हमें पहले खाड़िया होता,
1: सही बात है,
0: आपो नीचे बैठ धोता सखड़ा अखड़ा बासना अलग रखता उनसे, तो सिंह रसोई में तो बासन छोड़े की जगह को नोती थी, हमें भी वो भी देखो आपको कहने को नहीं, हथ नितंगा धोता तो वॉश बेसिन को नोता वो भी नीचली अलग जगह होती, वो भी हमें आपको कहने को नहीं, कपड़ा भी आपको हाथ से कौन दीजिए क्योंकि वॉशिंग मशीन आई तो आप नीचे बैठना गए को नहीं, गाय दूता थे पोजिशन देखो गाय दुबन गाय दुबन दिखी थी उकड़ू बन बैठे तो वो भी थोड़े सिद्ध हो जाए, हमें गायों भी देखो बहुत कम जगह वे और वे तुम्हारे कौम दार खुड़ा भी तो वो भी थोड़े कौम को नहीं गए। आगे अगर थे बटो तो दिन में आप चक्की चलाता ताजुआ तो पीसता खाता, हमें देखो चक्की भी गुनी गए घट्टी भी गुनी गए, घट्टी वे ना घट्टी हो गए भाई आप घरे कौन गए तो लारे की बच गई कई चक्की भी या बाजारो चक्की तो ठीक है बाजार अट्टो आवे तो आप कौम भी कौन, मैं ऐड़ा ऐड़ा लोग देखिया है जो को नीचे पालथी मार भी कौन बैठ सके। आसन तो सबसे सोरो आसन कवे सुखासन, ठीक है सुखासन यानी चौकड़ी मार पालथी मारना वो भी सबसे कुन्नी है, वो तो पूछिए मेरे को दिन भरी दिनचर्या बताओ पूरे दिन में एक बार भी नीचे कौन बैठे हैं, सुबह उठिया बेड से उठिया वेस्टर्न टॉयलेट में गया पूरे बाद में किचन में आपका कौन किया खड़े खड़े आ रहा खड़े खड़े कौन कर डाइनिंग टेबल में बैठ गया रोटी जिमिया कमरे में गया पलंग में बैठ रोटी जिमिया उभिया
1: बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए पलंग
0: में दाड़ा दावे अपने की तरफ दाड़ा दावे जड़ा सूझे उना खासो तो शुद्धता ही की रही पच्छे की करे ऑफिस गया वर्किंग लेडीज से बेचारी को टाइम गुन रहे उना कुर्सी टेबल ओ कवे में नीचे कदे बैठ जे कुनी पूरे दिन में तो वो गलती कुन जो नीचे बैठ गया है कुनी और चौकड़ी मार कुन बैठ सके तो मल्ला अपन की बैठ पे तो ये वास्ते आप रे पूजा रे अड़े में अगर नीचे हो तो बहुत बढ़िया तो दिन में एक बार पालथी मारते बैठ गया सुखासन हुए सुखासन आप रे नीचे आड़े मूलाधार वास्ते हाथ जोड़िया अंगूठा लगाओ बे पसली और वक्ष स्थल रे सेंटर में ऐ थोड़े कौम हो गए हृदय चक्र रो अनाहत चक्र रो, ठीक है गहरी श्वास ले जे छोड़ जे तो आप नीचे राज को मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्र है जैसे मंत्र बोलो ही नहीं तो श्वास ऊंची नीची गई तो ओत कौम दे घड़े से बोलना है मंत्र बोलना है तो विशुद्धि चक्र में से कौम दे ध्यान लगा जे बस बे अंखेर बीच में भूमध्य मत कौन दे सारी एनर्जी एक्टिव तो सहस्त्रार चक्र में अपने आप कौन दे। एक ठाकुर जी आड़े में दिया बत्ती करी आड़े भी थोड़ी झाड़ा झपटी करी और कुछ भी मंत्र नहीं आ रहे तो गायत्री मंत्र बोल दो ओम नमः शिवाय बोल दो कोई पांच बार बोल दिया दस बार ग्यारह बार झुको तो ओम ओम ही बोल दो उत्तो करण सुनी थोड़े धीरे धीरे अपने आप जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और उगते सूर्य को देखने की कोशिश करो नी भी देखो उगते कभी सूर्य ने देखन चुकी वे जैसे सूर्य रोशनी में जावे अंखियों वहां से जो को तो बात करी बढ़िया है पूरे अलावा आप चक्र भी मणिपुर चक्र
1: अच्छा।
0: एक तो मलासन की समस्या है बीजी समस्या की गई आजकल देख लो बीमारियां बढ़िया तो आपको कहीं इलाज है खाना कौन पचे कब्जी दे खाना पचे कौन पेट बड़ा बरसात कौन है हर तीसरे आदमी की समस्या है, ठीक है तो हमें खाना कौन पचे कारण की है आप या तो खाना सही को नहीं या मोली मशीन सही को नहीं यानी या तो गेहूं में बटा है मशीन खटके पे चक्की खराब है तो जब थे सूर्य रे संपर्क में जावे तो कभी की ऊरी को रश्मियों भी नहीं वो सीधी मणिपुर चक्र में से बढ़िया करें
1: अच्छा
0: हाँ हमेशा और मणिपुर चक्र रो कलर भी पीड़ो
1: अच्छा
0: पीड़ी अभावे और सूर्य रोशनी पीड़ी ओड़ी कल्पना करो कि मौजे है तो वे एक सबसे छोटो कौन तो सूर्य संपर्क में जावा उरे बात नौकासन और कुछ चक्की जलन कुछ अभ्यास है वो तो मणिपुर चक्र भी नहीं एक्टिव है मणिपुर चक्र थोड़े पाचन शक्ति ना सक्रिय करे इनडाइजेशन कब्जी ऐसा समस्याओं क्यों हो गई नाभि से दो अंग ऊंचे जो चक्र दे नहीं वो थोड़े भोजन दी चया पचे क्रियाओं और अंगों रो खास कौन है जैसे मैं थोड़े आ जा रही आतो है नी थोड़ा गोल ब्लैडर बीजा जो भी थोड़ी चीज है प्लस शुगर से भी कनेक्ट करी बीपी से कनेक्ट करी तो ये चक्र वास्ते जब से इन्हें हुलासो

0: तू लाचो, तू ऐसा कर एक्टिव होते, तू यहाँ तो फंक्शनिंग
1: काम
0: करते,
1: बिल्कुल
0: चेयर
1: बिल्कुल
0: में से बैठे बैठे वह कोनी ऐसा कर दबी कोनी
1: हाँ
0: दबन ना सकी है, तो नीचे मलाक नहीं बैठी है तो अना भी कम हो, पालती मार बैठी है अना भी कम हो, थोड़ा सा ईयर एक्सरसाइज करी, ऊंचा उठा बैठ करी, बुआरी पोछा ऐसा कर एक्टिव होते, अपने आप बे काम करन तो थोड़ा
1: बिल्कुल
0: खाना
1: बिल्कुल
0: पचना शुरू हो जाता है।
1: देखो कितनी बढ़िया बात है कि आपा जो काम सहज रूप से कर रहे था वह तो आपा विमुख होया तो अपना बीजी सब चीजों हमें अपना ऐसा चीजें सब प्रयास करनी पड़े तो सबसे तो बढ़िया बात है ना आपा घरे बाई नो क्यों बुलाऊं आपा खुद ही जो काम करो जो काम आपा खुद कर सको और जो करण तो अपो रो स्वास्थ्य सही
0: स्वास्थ्य
1: रहे
0: है
1: सबसे
0: बहुत,
1: तो पहली चीज तो स्वास्थ्य है पहला
0: स्वास्थ्य है
1: सुख
0: निरोगी
1: निरोगी काया
0: काया बस,
1: बिल्कुल
0: और दूसरा सुख घर में माया, तो आपको घर ही माया ना भी दे रहा हो
1: बिल्कुल
0: और निज को
1: सही
0: आप
1: बात
0: स्वास्थ्य भी गवा रहे हो।
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: बहुत फेमस लाइन मैंने सुनी थी कि इंडिपेंडेंट महिला है अक्सर डिपेंडेंट होती
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है
0: है।
1: लाख रुपए रिवाज के तो देखो तृप्ति जी अब पर ये बात तो जारी रखता हूँ
0: जी
1: चार छह
0: हाँ
1: वेला हो
0: जी
1: तो मैं ये रो पूरा लाभ भी उठा सा
0: जी
1: पर
0: जी
1: पहले मैंने रो मनोरंजन
0: मनोरंजन
1: करो
0: करवा जी जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: समय जीती है ओ समय मैं बोलारे को नहीं जा सकता पर कौन घर कौन जीती है वो अगर खुद भी करो तो जैसे सब बताए कि वे सूर्य पर जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। तो मैं पहले तो को बात करी ये रही हमें आजकल भी समस्या की है पर देखो कि बहनों रख पेट बहुत जल्दी आ जाए
3: जी बिल्कुल
2: तो ये वास्ते अपन को की करना चाहिए जिसके सो करो पहले तो मला से नॉर्मल में भी अगर आप बैठता
3: हो हां फर्क पड़ता है
2: बैठ के पोछा झाड़ू करता तो वो सुबह पर पेट में फर्क पड़े
3: जरूर आ पेट दब से नहीं आपको की कर जाए हम काफी लोगों ने पूछा है कि तो बैठो हम करो तो कोई पलंग में से बैठ जाए काम है बैठ जाए सोफे में से सोफे में से भी बच्चा होकर बैठे बड़ा बैठे फैल के मतलब वो ना लगे कि सोफे रे लारले पास जो गद्दू है ना और मनो पूरा उपयोग लेना है तो लारे पुट्ठी इतनी टिकावे कि पूरा फैल जावे थोड़े शरीर सिद्धांत अनुकूलन अगर थोड़े शरीर नो तो रोज उज खोल बैठ तो पूरा मतलब मैसेज की जावे ब्रेन नो कि ये जगह नो फैलना है फिर जब पेट नो कदे कुन दबाओ और पूरी पुट्ठी रो सहारो ले पूरा फैल के बैठो तो धीरे धीरे अपने आप पेट आउन शुरू हो जाते तो पेट री आउन रो सबसे पहलो कारण यह है चेयर सिटिंग अगर थे देख लो कुछ लोग ऑफिसों में वे तो दिन भर वो कुर्सियों में तेज बैठना है जो सुबह आके रात तक लेट आवे वो चलन फिरन जगह को में बहुत थक जावे पचो की करे खाए के सीधा सो जावे कि भाई सुबह रा थकोड़ा है हमें तो आराम करते एवे तो उमर पेट क्यों को नहीं फैले वो आपरे कर्मों को पेट ना मैसेज दिए कहते फैल जाओ
2: अच्छा।
3: बॉडी फैल गई क्योंकि दिन दबा नहीं कुन दियो तो हमें छोटा छोटा विवाद अपना उपाय करना पड़ते पहली बात है कि खाना खाए तो कभी अपना सुनना ही नहीं खानो खावते तो बिल्कुल भी कुंसुना कोई कीमत मत है छोटी जिंदगी की करना है सुबह रे भोजन रे बाद 10 से 15 मिनट निद्रा।

मेरे दिनों में सही है, समस्या को नहीं। और रात रे भोजन के बाद टहलना है जरूरी है, तो क्योंकि रात रे बाद खोने के बाद आपको कर्म को नहीं कर दे आप सो जा जी। अगर कोई काम भी करे तो लोग की काम करे, आप रे ऑफिस रो काम में तो लैपटॉप में थे वो में भी करें, शारीरिक श्रम को नहीं करें, मानसिक श्रम भले ही करें। तो रात में खाने के बाद आध घंटा हमें थे स्टेप गिन सो ऊनो छोड़ो 15-20 मिनट टहलो, कम से कम आध घंटे टहलो तो बहुत बढ़िया है, और बात से भले सुल जाओ। कोशिश है करो कि थे खाना जल्दी खाओ, क्योंकि जब तक सूर्य आसमान में है थोड़ी जठराग्नि सक्रिय है, जो जो सूर्य ढले जो हमें देखो कोई अगर इंसान इत्र लगाए वो थोड़े कने आए थोड़ी खुशबू आई और जावते खुशबू खत्म कौन रहे, जावनी शुरू हुई हल्को एहसास रवि उमज सूर्य के साथ है। सूर्य जब अस्त हो जावे नहीं तो जावते सोए पूरे असर प्रभाव खत्म को नहीं रहे, लेकिन वो स्नेह स्नेह समाप्त होना शुरू हो जावे। तो देखो अगर सूर्य गर्मियों में है तो 7:30-8 तक हल्को उजास रवि, तो कोशिश करो 7-7:30 तक आपको खाना खा लो तो धीरे धीरे थोड़े पचनो काम शुरू हो जाते। 10 तक तो कोई सूर्य को नहीं, 10 है 10:30 है सुवन सु 2 घंटा पहले तो आपको खाना समाप्त कर देना चाहिए। तो खाने रही जो मशीन है उन्हें पचन रखो मिले, हमें आप इतो खा लियो कि मनुआर में मनुआर रखत खाओ, इतो खा लियो तो खा लियो कि शरीर मशीन होगी ओवरलोड, हमें वो फट को नहीं पावती क्योंकि भगवान टोका पुठरा लगाए सीढ़ियों भगवान बढ़िया है तो फट को नहीं पावती, को मरना खो बड़ा वन तो फाट ही जावे, इतो खा लियो तो कि वो खाना मुँह से धक्को दीते मोहली चक्की ने चलना है खाना पचन वास्ते, उन्हें जगह कौन मिलती घूमटिया को कर मारे तो वो थोड़ा धक्को देते तो थोड़ी मोहली स्किन है वो फैलनी शुरू हो जाते। मनुष्य जो को पेट की स्किन भी त्वचा अत्यंत फ्लेक्सिबल गई अत्यंत, फिर देखो लुगाई 9 मिनट टावर नो पेट में रखे कोई कितनी पेट कम हुई लेकिन वो कितों बढ़ जावे फटे तो कौन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल गई। तो पेट की त्वचा ज़्यादा फ्लेक्सिबल गई, और बाद में देखो तो थे जो नितंब है वो भी जगह फ्लेक्सिबल गई, सथलों हैं वो फ्लेक्सिबल गई, और अपना जो हाथ है जो अपन बाइसेप्स जिकने कह जी ओवरे बाद सबरा अलग अलग नंबर आया करे, तो सबसे पहले की बद से पूरे बाद की बद से ऊरे बाद थोड़ो की बद से है चीज़ें कदे भी दे कितों भी खा लो थोड़ा जो सतलो है वो थोड़े पेट जितनी को नहीं फैले, क्योंकि हर चीज़ की आप एक क्षमता होया करे सीमा भी। तो पहले को हम तेज करने खाव दोपहर खाने के बाद वज्रासन में बैठने हैं ठीक है, क्योंकि सब ऋषि मुनि सिस्टम सोच समझ बनाया है। आप पूरे भारत एक गर्म प्रदेश में आवे यानी गर्मी बहुत पड़ी है ना, कुछ कुछ स्थान है जहाँ को नहीं पड़े लेकिन मोटा मोटी आपको देख लें तो एक गर्म प्रदेश है, तो गर्म इलाके में देख पा रहे इंसान बढ़ती लाइन में कित घूम जाते हैं सवाल ही को नहीं। तीरवास से आप रहे ठिकाने में थे वज्रासन में बैठ जाओ, कितनी देर बैठना जितनी थोड़े शरीर क्षमता 5 मिनट तो बैठने की कोशिश करो, आज 1 मिनट बैठो कल 2 मिनट परसों 3 मिनट धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाते हैं, बस वज्रासन में बैठिया और बाद में थोड़ा 10 मिनट आठ होने से बने लेट जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रात को खाने बाद टहलना जरूरी है क्योंकि आप पर ठंडा है संजा पड़ी है रात पड़ने बाद हल्की ठंडकार हो जावे। कोशिश करो ऐड़े लोगों से दोस्ती करो जो कोई थोड़ा बातों से आवे उम्र बड़ा रात को टहलन निकल जाओ समय कर निकल जाओ कि आपको उठाए कम पड़े, तो ऐ करके पहलो खाना पच जाते पछे जो वज्रासन है वो पाचन आसन है बीजो आप मलासन बात करी जाती वैसे ही यो आसन में बैठन जो की हो जाए कि थोड़ो खाणो पच से बढ़िया और थोड़ी जीना पोके जी हाजत मल रो निस्तारण बढ़िया होते, जब मल रो निस्तारण बढ़िया होते पेट बढ़िया साफ होते तो आप अपने आप अच्छे से खा सो, पुरानो मल जब पेट में जमा वे नहीं तो ताजे खाने नो भी वो खराब करे दूषित करे और वो पचे भी नहीं। और ये सबसे बड़ो जो को नुकसान है वो है फास्ट फूड, और मुको फास्ट फूड में भी कुछ न्यूट्रिशन होता होता है ताजी सब्जियां डालीजिए सबसे गंदी जो चीज़ आपको कह सब्जी बनाओ अभक्ष्य है अपने शास्त्रों अनुसार वो है पैकेट बंद फूड, कोई भी प्रकार वो पैकेट बंद जो खानो है वो कदे भी शरीर के वास्ते कौन बनियो, वो में गंदो पाम ऑयल डलोड़ोगे वो बहुत खराब भी शरीर के वास्ते, थोड़ो ए शरीर एक मर्सिडीज BMW जो गाड़ी वे वो सू भी ऊंची गाड़ी है, अगर थे BMW में कदे केरोसिन कौन डालो तेल डाले खोचे में थे कदे पानी भरा सो कि थोड़ी तो चलते थे कदे तेल में पानी भी कौन मिलाओ कि अरे खराब हो जाते गाड़ी ना कदे घासलेट कर, तो थे सोचो कि थोड़ी शरीर जो गाड़ी है BMW तो बड़े इंसान जीवन में दो ले सके देह पक्षी कौन मिले थे देहर में गंदगी क्यों डाली फिर जीभ लाभ ला रहे कि जीभ न सुहावे मत डालो, जब भी कुछ खाओ
तो पहले सोच।

0: रोके थे कि खाओ क्या, कि एमोजी मशीन वास्ते बढ़िया है अगर थे आपके शरीर में गंदी चीजों डाल सो और वो बाद में फैल जा सो, वो खानो कौन बचे, खानो को नहीं बचे, पेट साफ कौन रहे, तो भी खाता जाए तो पेट बढ़ जाए। ऐसा चीजों केवल थोड़े भोजन से जरूरी है, भोजन की है जो जो मोए जावन लायक है वो भोजन होना चाहिए, न कि जो बाजार में लियो आपको खा लियो और कदे अड़े सोन में जाओ पे आ जाना कुछ भी को नहीं। फ्रूट खाओ हफ्ते में एक दिन, जो ना पुरानी कब्ज हुई नहीं उन हफ्ते में एक बार कम से कम उपवास रखना चाहिए। उपवास को नहीं रख सके शरीर की क्षमता को नहीं तो उन्हें एक वक्त खाना खाना चाहिए, रात रो खाना नहीं खाना, वो भी संभव को नहीं तो रात रो सब्जियों रो जो सूप भी वो पी लेना चाहिए। हमें कोई कैसे मैंने ऐ भी को नहीं भावे तो थे दिन दाल पी लो, दाल रो सूप, दाल रे सूप रो मतलब है दाल रे खूब पतलो सूप, जितो और पौनी पौनी पे निकाल सको पतलो सूप, वो में थे कम मसाला घट के थोड़ो घी घट के ऊरो सेवन कर लो तो कम से कम एक दिन तो पेट री मशीन नो आराम मिले। है नहीं, आप स्कूल जा जी काम कर जी अभी तुम्हारी छुट्टी लीजिए, आगे कभी ग्यारह की छुट्टी होती थी तो ये चक्की में थोड़ा विश्राम देना भी जरूरी है। और ये वास्ते महिलाओं थोड़ी सी पुरुषों को ज़्यादा सोचती है क्योंकि व्रत उपवास उम्र धर्म से जोड़ दिया गया है तो वे द्वारा वो कुछ न कुछ आपके शरीर न सुधार सके। और उठा बैस भी लुगाया करती हो रवि, जो लुगाए होम मेकर है और वो उठा बैस करती हो रवि, मनक उको नहीं कर पावे और तो हम लोग देख लो ज्यादा निकल जाएगी ऐसी चीज है।
1: शरीर रूपी जो मशीन है मेरे मन की चीज जतनी है और चीज हमने पूछा तो बात करी कि भोजन जो खावा नहीं योग्य है। सबसे बढ़िया बात है कि पर गली बहनों जो खाना बनावे तो पूरे मन से खाना बनावे, साफ सफाई रो ध्यान
0: बहुत
1: है। सबसे बड़ी बात तो आई है कि और है ना अपना कोरोना जो महामारी आई तो ये सिखाया भी सही कि आप जो बार बार रसोई में हाथ धोए और साफ सफाई से जो खाना बनावे और पर वास्ते कितनी अच्छी चीज है
0: जी।
1: तो मेरे वास्ते पर माए तो जो पर वास्ते चीजों कर रखी है वो वाकई में अच्छी है। अपन को जीवन शैली में कुछ हद तक अच्छी अपना होनी भी चाहिए तो आप परिवार की तो चुकेरी पर जरूरी है कि आप बहनों को मनोरंजन भी करवा दे तो सुनवा दे बहनों में कुछ हो तो
0: जी जी जी।

0: मुक्त भारत अभियान, जन जन भारत के ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन भारत के ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
0: अभियान। जन जन भारत के ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन भारत के ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: योग करियो, भोजन में चाहेगा तो भोजन के साथ के साथ देखो ऊपर है ज्यादा मन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर भोजन बनाओ तो ऊपर मसाला देखो है वो भी शुद्ध होना
4: चाहिए जी, 20 बार
3: तो ऐसे हो के पैकेज बनने ले होना चाहिए। और आजकल में जो कोई जीवन शैली है वो मैं आपको देखा है कि अधिकतर लोग 100 मई को अगर हम बात करो तो 80 जना जो है वो मसाला बजा रही वापरता उसको, बहुत कम जना ही है जिसको घर का मसाला बाप रही, क्योंकि जिसको घर का मसाला है वो ना अगर अपन साल भर रहा दाल है या मसाला है एलिमन तो अपन ये ना सही तरीके से
4: बटना पड़े
3: बिल्कुल। तो हमें देखो जो आप साल भर रहे वास्ते जीरे ना लो तो जीरे में की गलती रखो ताकि अपन जीरो खराब नहीं हो
4: जी। देखो पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दिया, जिसको तो पता नहीं कि बाजार की चीज़ मत खाओ, बाजार ही रेडी टू यूज चीज़ों में लेनी ठीक है। जो हमें बाजार से आपो भुजिया लाया पैकेट खोली उन खाया वो चीज़ बाजार ही खराब है ठीक है, क्योंकि बाजार की जो चीज़ों में की होया करे कि वो में एड़ा केमिकल डालिया करे ताकि चीज़ खराब नहीं हो और वो अपन नुकसान करे। बाकी देखो आजकल तो जीरा बीजा है या जिकन आप अगर कच्चो धोन है वो तो पैकेट बंद आ गई है, हमें आप दाल ना अगर लास्ट हो तो दाल ना लेते तो कच्ची खाजे को नहीं है नहीं, पोहा लाया पैकेट बंद सूजी पोहा कच्चा तो खाजे को नहीं आपको।
3: बिना
4: पॉलिश भी आ रही
3: है
4: फर्क है,
3: अगर अपन पॉलिश वाली दाल खावन है तो मन में लगे कि अपन वो ना खावन के बाद एसिडिटी और भी समस्या ज्यादा
4: और सिज्जे दूरी है और बिना पॉलिश वाली दाल सिज्जे भली है तो पुठरा पूत है। देखो कि वो पॉलिश भी अगर दाल है तो मैं चमक कैरी डाली गई है, आर्टिफिशियल से चमक डाली गई है और ज्यादातर की रेस्टोरेंट आ रहा जो लोग हुए नहीं वो सुथरा पिला रहे चीज़ ले जावे ताकि वो चीज़ सुंदर दिखे, या कि ना मुगर दाल तड़नी है तो उन्हें फुटरी चीज लगे कि भाई दिखता है जो दिखता है। तो ये वास्ते तो बाहर ले खाने को खराब करे, क्योंकि वो है देखिए कि इंसान जो खाना खावे नहीं वो पहले अंखियों से खावे। आज बाजार में कैड़ी भी मिठाई है जिसे जुको मिठाई चमकीली हो से सुंदर हो से टाबर ओ लेवन निकल सके ऐसे बढ़िया लगी थी, जबकि भले में नकली कलर लगोड़ा होता है असली में तो भूरो कलर है कोई नहीं कोई वो ना तो नकली बनाया गया है सब चीज़ों। तो ये वास्ते ये जरूरी है कि आप पैकेट बंद रेडी टू यूज चीज़ नहीं ले जाए ताकि केमिकल से बच जाए। बाकी अगर ते जीरा भी जले तो आपको साफ कर जाए ना और साफ करने के बाद आपो मैंने रंध जे आपो मैंने कच्चो हर वक्त को नहीं खा जाए है नहीं, कोई रूप में जो अजू आप ही खा ले जाए कि भाई पेट ठीक रहे, पर आपो सब्जियों में डाल भी तो खाजे। हमें देखो चीज ना अगर लेवना वे केवट नहीं की वे तो पहली बात तो है कि चीज ना छोड़ नहीं देनी, जो शरीर है वो जापोरी चीज़ है आप इस्तेमाल नहीं किए ना पर छोड़ दो हाथ भी घट पर रहना और अगली मोरे पाड़े को लुगाई करते कि जगह फोड़नी चाहिए वो कहे कि जीवन मूर्ख बनाओ आप जो एक गाची सजनी तो खुशबू सो वे पास जीव पढ़ना शुरू हो जाते कदे एत रखी कदे अगे वो कभी मौज गरेज करे गेहूं जो धोन की बोरी है नी कदे ये खूने रखी महीने बाद जगह जगह भी फोड़ती रहे और कोई भले नहीं बाप रहे तो ऊंचा नीचा करती रहे तो वे सुखी हुई कि चीज अगर आपको सारता रह जाए नी तो चीज कदे खराब की नहीं जाए ठीक है सो रखती रख दी मैं कदरी का सार सतम पई पई खराब हो चुकी। दूसरी बात है कि कभी कभी पारे की गोड़ियों गतन तो खराब कर लिया लेकिन पारे की गोड़ियों साथ साथ यह ध्यान देना जरूरी है अगर थेवे नु अच्छे से पैक कर नहीं डाल सको तो सही है कि नहीं डालो
3: अच्छा।
4: क्योंकि खाते टाइम कोई टाइम धोन में जब गोड़ियों ही डाल दियो तो पिसते टाइम जो भिड़ो आएगी तो और सुधरने जगह शरीर खराब रुको हम करते तो बढ़िया तरह से दो तीन कोट कपड़े रखकर पच्छे दिनों डालनी चाहिए और कपड़ों भी कहो लेना अड़ो जो कि चमकी लो है जो मतलब कि रेशमी थैलियों में जो आवे नी कपड़े आड़ियों
3: हाँ।
4: तो जो थोड़ा अड़ो रंग वे जो कि देखते ही ठा पड़े
3: हाँ।
4: जो दो जो गेहूं है
3: हाँ।
4: तो हरे रंग डाल दी
3: हाँ।
4: नीले डाल दी झट से ऊपरों देखी थे तो वही चीज़ ला रहे अपन अड़ो काम करना कि अपने शरीर में रिस्क नहीं गए। एक और तरीको है कभी गेहूं नवे रंग दो कि नवो जो भी ताजो धोन आवे नी गेहूं तो वो तासीर गर्म दे हमें गर्म उष्ण कौकर दे जो जुको चीज लंबे समय तक धूप में पके मतलब वो रिमोट आसी धीरे गर्म हो जाए जो गेहूँ है हमें गेहूँ कितने महीनों तक खेतों में खुला ही रहे तो वो गर्मी ना सोखे वो मैं गर्म दे जब कभी देवते धोन नहीं खाओ ना तो अपना तकलीफ दे तो उन्हें लियो महीने में रखियो ठाव में भर पुराना थोड़ो कियो पछे आप उन्होंने खाओ जब अगे तो की करता गेहूँ ने लिया उन्हें धोता पहले डागुड़ ने धोता या चौक ने धोता पछे और गेहूँ ने जो धोया खुले में डाल देता तो सुख जावे बढ़िया एकदम तिखो तावड़ो जो उन्हें लगे हाथ भी जा फेरिया करिया वो रखिया और बात करी जो अरंडी रो तेल भी नहीं मोटे को कुंडे में गेहूँ लिया हाथ में थोड़ा अरंडी रो तेल लियो और उरे बाद वो उन्हें फेर दियो वो उन्हें रखियो वो भी हाथों हाथ को नहीं खाई जो थोनो खावना अगले महीने तो केवल एक महीने पहले करनी पड़ेगी फिर बाद रख दो और पच्छे में खाओ क्योंकि वो तेल पूरा गेहूँ सोख लेते हैं और कितो तेल वे कि थोनों जब से ऊंचा नीचा करो तो थोन हल्को जोड़ा वे के है तो वो की पेट वास्ते भी फायदो करे और ऊर जो कोट करोड़ वे गेहूँ वैसे वो गेहूँ ना कभी जीव को लगे तो अपर प्राकृतिक तरीको है और बार थो में भरो तो वे अखबार जिसमें नीम की पत्तियाँ मत अखबार पच्छे कोई कल जो भी थोड़ा वे कपड़ो वे बीच और मतलब रखो क्यों
3: सही बात है पहले देखो कहता नहीं कि मतलब अपन एक एक बार जितना काम लेना है ना उतना ही जाओ और वे मतलब एक एक परत लगाऊंगा रहो तो अपन लेवर में भी थोड़ा
4: ही होती
3: और नीम की पत्तियों से वो में थोड़ी थोड़ी नहीं तो हमें लोग की करे एक नीचे लेयर एक मत है थोड़े थोड़े या अपन एक बार में 10 किलो या 5 किलो जो
4: अपन
3: चाहिए उतनी लेयर और वे नीचे अखबार और मतलब पत्तियों ताकि थोड़ा लेवर में भी दिक्कत को नहीं हो और वो अपने वास्ते सही भी रहे
4: दाल में मूंग और देखो मूंग और दाल है नहीं मूंग और तो अगर कहता धूल रहे मैं
3: देखो मैं घर आया हूँ की बातचीत करता रहे तो मैं जब पूछी हूँ तो मैंने कहो कि चना गेहूँ मूंग यहाँ साफ करके मत रखो
4: अच्छा
3: जब आप चीज ले तो मेरे मैं धूल हो गई है तो आप मैं धूल घटो चाहे जो मैं धूल पड़ी है तो पड़ी रहो और उरे बीच में था उरे मोय नीम है और एक को था बताया वाला सी रोटी ले ए लगाए दो तो वे सुबह में जीव को नहीं पड़े और दूसरी बात है कि अपर जो चना और मूंग है ये और ये जब अपन कटाई और करें तो यहाँ सीधा बोरियों में भर दिया जाए तो यह ना अगर से थोड़ा दिन तक पीपे में भर के या जिके में भी थोड़ा रखना है उन्हें भर अगर तो थोड़ा दिन तक इन्हें धूप में रखो तो वे जो एक्स्ट्रा पानी यानी मॉइस्चर है वो भी निकल जाए उन्हें जब पूरी धूप लगे वो पूरा सूखा हो जाए तो वो चीज़ जो है वो नुकसान को नहीं करे नहीं तो उन्हें थैली और मैं घर के जब रखा है तो मैं थोड़ा सी
4: आर्द्रता नमी रहे
3: हाँ वो रह जाए तो

0: जीवरो पढ़ने दो कारण बनो।
1: कारण हो जीरो वास्ते ए भी एक
0: बढ़िया तरीको है, बहुत बढ़िया बात है।
1: और अगली बार मैं करके भी देखियो के जिको मूंगरी दाल थी उन्हें जब मैं पूरे डब्बे ना धूप में ही रखियो आना जो बरसात तो कोने थी तो उन्हें अच्छी धूप में रख दो थी वे डब्बे ना और बारिश हुए तो मार ले लो तो वे सुबह न्यारी जिको साल भर दाल है वो में कोई प्रकार जीव कौन बढ़ियो जीव पर धूप में पहली बात तो पड़े गुण
0: पड़ेगी नहीं,
1: और अगर पहले पड़ोड़ो है तो भी जीव
0: निकल जावे
1: मर जाया करे
0: बीचो है भी। कभी टीना बहन के जो मसाला है नी तुम कांच री भरनी हो भरना, और उस बात भरनी हो ना भरनी है समय तो चावड़े बिता दे। हाँ
1: हाँ
0: तो और भी कोई दिक्कत को नहीं
1: है। हाँ तो तब तो ही तो मैं यार जीव भी जाए देखो
0: तो हो जावे।
1: तो देखो बातचीत चर्चा करते करते टाइम
0: टाइम का बेल की उठाए कौन बड़ी हो
1: तो इस वास्ते हमें बहनों समय तो चलते रहेंगे सोचो फिर मिलन के बाद मेरे साथ आप भी दे सकते हैं ना
0: और तृप्ति भाटिया ना दो जाओ नहीं इजाजत सीख जोम जोम।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और

0: जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने TMC विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसली ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,000

0: हर 127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए चलते हैं विविध भारती।
2: किलोहर्ट्ज़ DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बात उस शख्सियत की जिनकी आवाज में अपनापन था, शरीर में ताकत और चेहरे पर सरलता। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया में ऐसा नाम बनाया कि लोग उन्हें ताकत, सादगी और भारतीयता की मिसाल मानने लगे, साथ ही जिन्होंने कुश्ती में देश का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं दारा सिंह की, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई।
3: जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकेगा जो जग भरी।

टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।

एक ही है मोटर का, जानवर से नहीं वफादार, ओ बस एक ही है मोटर का, जानवर से नहीं वफादार, ओ कसम तेल को तोड़ दे दम, मरते दम तक जले ये दम दम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोदी, मैं तो कहता हूँ मर्द टंगे वाले।

मैं हूँ मर पिटाने वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर पिटाने वाला मैं हूँ, मर पिटाने वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला।

माँ क्यों परेशान है, अपने किस्मत पे हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपने किस्मत पे हैरान।

तू भाई बादल क्यों भाई मोती ऐसा कहता हो मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला जागोरा के साया मार सके ना कोई अरे जागोरा के साया मार सके ना कोई हर बाल लबा का कर सकेगा जो जग मेरी होए होए होए जागोरा के साया मार सके ना कोई हर बाल लबा का कर सकेगा जो जग मेरी होए होए होए जागोरा के साया मार सके ना कोई अरे जागोरा के साया मार सके ना कोई

0: दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के गांव धर्मुचक में बलवंत कौर और सूरज सिंह रंधावा के यहां हुआ था। कम आयु में ही उनका विवाह उनसे आयु में बड़ी लड़की से करा दिया गया। 17 वर्ष की उम्र में ही वो प्रद्युम्न रंधावा नामक बेटे के पिता भी बन गए। दारा सिंह का छोटा भाई सरदार सिंह, जिसे सब रंधावा कहते थे, दोनों ने मिलकर पहलवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के दंगलों से निकलकर शहर तक उन्होंने अनेकों कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम किया।
1: एक बात है कहने की, आंखों से कहने दो। एक बात है कहने की, आंखों से कहने दो।
2: बढ़ जाएगी बेताबी, रहने दो रहने दो।
1: एक बात है कहने की, आंखों से कहने।

0: एक गुल का बुल बुल ना समझा तो
1: एक बात है कहनी थी आँखों से कहने दो
0: बढ़ जाएगी बेताबी रहने दो
1: एक बात है कहनी थी आँखों से कहने दो।

0: मोहब्बत में देती है मजा बेकरारी।
1: बताओ दीवानी
0: मोहब्बत में देती है मजा बेकरारी।
1: चलिए जी मेरे पास अफसाना समझा दो।
0: एक बात है कहने की आंखों से कहने दो।
1: बढ़ जाएगी बेताबी रहने दो रहने दो।
0: एक बात है कहने की आंखों से कहने

0: पर हमको मौसम भी दीवाना समझा तो
1: एक बात है कहने की आँखों से कहने दो बढ़ जाएगी बेताबी रहने दो एक बात है कहने की आँखों से कहने दो।
2: 1947 में दारा सिंह सिंगापुर आ गए। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियनशिप तरलोक सिंह को पराजित कर क्वालालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। 1952 में वो भारत लौट आए और 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। इसके बाद ओरिएंटल चैंपियन किंग कॉन्ग को भी परास्त किया। 1968 में अमेरिका के विश्व चैंपियन लव थेस को पराजित कर वे फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में से किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 1963 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीता और ज्ञानी जैल सिंह के हाथों अपराजय पहलवान का खिताब बरकरार रखते हुए कुश्ती से संन्यास ले लिया।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और हमारे आज के कलाकार हैं दारा सिंह। दोस्तों दारा सिंह की पहचान सिर्फ ताकत नहीं अनुशासन भी था। कहा जाता है कि वो नियमित व्यायाम और बेहद सादगी भरा जीवन जीते थे। कुश्ती की लोकप्रियता ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचाया। शुरुआती दौर में वो एक्शन और स्टंट फिल्मों के बड़े सितारे बने। उनकी शुरुआत हुई फिल्म संग दिल से, बाद में लीड रोल वाली फिल्म किंग कॉन्ग आई। उनकी अधिकतर फिल्में मुमताज के साथ आईं। करीब 16 फिल्में साथ करने के बाद ये हाईएस्ट पेड कपल था, जिन्हें करीब 4 लाख एक फिल्म का मिलता था।

0: छीन के
1: हाँ।
0: वो कहीं चल दिया
1: फिर क्या हुआ,
0: अरे हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया।
2: और अब बढ़े आपके मेल शामिल करने की, हमें बहुत सारे श्रोताओं की मेल मिल रही हैं, तो उनमें से हमने कुछ मेल्स को लिया है और ये मैसेज हमें मिला है। अपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगर परवीन, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अब्बासी और अरजान अब्बासी, उनके परिवार के सभी लोग और ये कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। आप हैं सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गौरैया, जालंधर से। और ये मैसेज हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोर, नारायण प्रसाद लहरे और दिनेश प्रसाद लहरे, साथ में है कालिंदी लहरे। बड़ेखेड़ा पंजाब से टिंपू मोर टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और अब बढ़ते हैं दारा सिंह जी के बारे में जानकारी के साथ। दारा सिंह ने 1980 के दशक में उनका रुख टेलीविजन की तरफ हुआ, जिसमें धारावाहिक रामायण में उन्होंने हनुमान का किरदार निभाया। इसके अलावा वीर भीमसेन और महाभारत फिल्म में भीम का किरदार निभाया। कई धार्मिक फिल्मों में उन्होंने भगवान शिव का किरदार भी निभाया। उनकी आखिरी फिल्म थी जब भी मैट। उनकी आखिरी पंजाबी फिल्म थी दिल मेरा पंजाबी और उन्होंने नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मैं माँ पंजाब दी में भी काम किया। एक्टिंग के साथ साथ दारा सिंह ने भक्ति में शक्ति और रुस्तम का निर्माण और निर्देशन दारा फिल्म्स के तले किया।

तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी सुन ले पुकार जोता वालिए लाटा वालिए माँ जोता वालिए लाटा वाली।

सुन ले पुकार जो तवालिए लाटावालिए हाँ जो तवालिए ओ लाटावाली।

फिल्मों कुश्ती के अलावा दारा सिंह ने 1998 में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया। राज्यसभा द्वारा मनोनीत तो वो पहले स्पोक्स पर्सन बने। 2003 से लेकर 2009 तक उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया। दारा सिंह ने दो शादियां की जिनमें 3 बेटे और 3 बेटियां थी। उनका पुत्र इंदु दारा सिंह भी फिल्मों में नजर आते हैं। दारा सिंह ने हिंदी ही नहीं बल्कि पंजाबी सिनेमा में भी खूब काम किया और लंबे समय तक दर्शकों के प्रिय बने रहे। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं किंग कॉन्ग, रुस्तम ए हिंद, शेर दिल, हरकुलस, मेरा नाम जोकर, आनंद, मर्द, कल हो ना हो जैसी फिल्में रहीं।

0: जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह।
1: बहुत लोग उन्हें अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन दारा सिंह सामाजिक जीवन में भी सक्रिय रहे। वे सार्वजनिक जीवन से जुड़े और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, इसलिए ही वो रुस्तम हिल जैसे सम्मान के हकदार थे। 1912 से 1912 में 83 वर्ष की आयु में 2012 में 83 वर्ष की आयु में दारा सिंह दुनिया से चले गए। दारा सिंह सिर्फ अभिनेता नहीं, उस दौर की पहचान थे जब मेहनत, संघर्ष और व्यक्तित्व इंसान को महान बनाते थे। उन्होंने साबित किया कि अखाड़े की मिट्टी से निकला इंसान भी पर्दे पर अमर हो सकता है।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। दिन के इंद्र प्रेस चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का, यानी गोल्डन एरा की फिल्म संगीत का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज के दौर में एक संदेश भेजने में जब बस कुछ ही सेकंड लगते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दिल की बातें कागज पर उतरती थी, लिफाफों में बंद होकर सफर करती थी और कई दिनों बाद अपने मंजिल तक पहुंचती थी। किसी प्रियजन के खत का इंतजार, डाकिये की घंटी की आहट और चिट्ठी पढ़ते समय चेहरे पर आने वाली मुस्कान, ये सब अपने आप में खूबसूरत एहसास था। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे खत, चिट्ठियों और पैगामों की और सुनेंगे ऐसे गीत जो इस भावनाओं को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां करते हैं। श्रोताओं, पहले प्रेम कहानियों का सबसे बड़ा साथी हुआ करता था एक खत। कई बार लोग रोज दरवाजे की ओर देखते रहते कि शायद आज कोई चिट्ठी आ जाए। उस एक कागज के टुकड़े में किसी की पूरी दुनिया समाई होती थी। आइए सुनते हैं एक ऐसे ही गीत जिसे प्रेम पत्र की मिठास आज भी महसूस की जाती है।
1: हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो

गाना लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे।

ये दामन में लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग दे नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

यहाँ श्रोताओं लिखे जो खत तुझे तेरी याद में। और श्रोताओं मुझे लगता है कि आपको भी मैं याद कर रही हूँ और आप शायद इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। तो अगर आपको अपने खत के बारे में, चिट्ठी के बारे में, पैगाम के बारे में कुछ भी बोलना है तो हमें मेल कर सकते हैं एक क्लिक पे iPRADIODELHI@gmail.com पे। और श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खत, चिट्ठी, पैगाम पे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आज जो दौर है वो इमोजी और चैट का दौर है, लेकिन उस समय लोग अपनी भावनाएं शब्दों में पिरोते थे। हर शब्द सोच समझकर लिखा जाता था, हर पंक्ति में प्यार झलकता था। ऐसे ही एहसासों के लिए ही सुनते हैं अगला गीत।

नमस्कार, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अभी जो आप गीत सुन रहे थे वो गीत गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम था शक्ति। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे पैगाम की, चिट्ठियों की, संदेशों की। जब लोग एक दूसरे से दूर होते हैं ना, तब चिट्ठियां ही रिश्तों को जोड़े रखती हैं। कभी खुशी की खबर तो कभी यादों का जिक्र तो कभी मिलने का वादा, सब कुछ एक खत में समा जाता है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो दूरियों में भी प्यार की गर्माहट बनाए रखता है।

अभी जो आप गीत सुन रहे थे ये गीत लिया था आराधना फैन से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। श्रोताओं, हर पैगाम कागज पर ही लिखा जाए ऐसा जरूरी नहीं।

कभी आंखें संदेश देती हैं, कभी मुस्कान और कभी कोई गीत दिल की बात कह देता है। पुरानी फिल्मों में कई बार गीत ही प्रेम का सबसे सुंदर पैगाम बन जाता था। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत।

चुप है, ये हो तो बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन

0: मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे चिट्ठियों की। कई रिश्तों की शुरुआत एक चिट्ठी से हुई, कई प्रेम कहानियां खतों के सहारे आगे बढ़ी। उस दौर में लिखावट भी पहचान होती थी, लोग लिफाफा देखकर ही समझ जाते थे कि ये चिट्ठी किसकी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो रिश्तों की उस गहराई को दर्शाता है।

दोस्तों हम बात कर रहे थे खतों की, लिफाफे की और पैगाम की। कुछ खत ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी पुरानी नहीं होती। पुराने संदूक में रखी चिट्ठियां, किताबों में दबे हुए खत और उन पर लिखे शब्द आज भी बीते दिनों की खुशबू लिए हुए हैं। इसी भाव के साथ सुनते हैं आज का अंतिम गीत।

दोस्तों, खत सिर्फ कागज नहीं होते, ये भावनाओं का आईना होते हैं। उनमें इंतजार होता है, प्यार होता है, यादें होती हैं और कई बार पूरी जिंदगी की कहानी भी। उम्मीद है आज के गीतों ने आपको उन दिनों की याद दिलाई होगी जब चिट्ठियों का इंतजार भी एक खुशी हुआ करता था। तो इसी के साथ अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यानी आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

0: 85 अफराद ने योगा किया, जिसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। इसके अलावा न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, काहिरा, कुआलालंपुर और दुनिया के दीगर शहरों में योगा डे मनाया गया। आपको ये भी बता दें कि योगा को आलमी सतह पर इसलिए कबूल किया गया कि ये जिस्मानी सेहत, जहनी सुकून और रूहानी बालिदगी का जाम जरिया है। योगा के कुछ अकसाम जो बहुत ज्यादा अवाम में मकबूल है, उनमें हठ योगा, जिस्मानी आसन और सांस की मशकें, राजा योगा, मुराकबा और जहनी इर्तकाज, कर्मा योगा, खिदमत और नेक आमाल, भक्ति योगा, अकीदत और मोहब्बत के जरिए कुर्ब इलाही, जनाती योगा, इल्म और फलसफे के जरिए हकीकत की तलाश। योगा हिंदुस्तान की कदीम रिवायत है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अकदामात के बाद ये दुनिया भर में एक आलमी तहरीक बन चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा परवीन, जिनका ताल्लुक जामिया हमदर्द से है, जो दरसो तदरीस के साथ साथ इलाज मुआलजा के शोबे में योगा के जरिए कामयाबियां हासिल कर रही हैं। आइए इस सफर का हम आगाज करते हैं और उनसे जानते हैं कि योगा किस तरह हमारी सेहत को बेहतर बना सकता है या बना रहा है।
1: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं, जैसे आपने बताया कि मैं हिफ्ज़ाने सेहत में हूँ, जामिया हमदर्द में, और काफी साल से वहां मैं पढ़ा रही हूँ। मकसद हिफ्ज़ाने सेहत का, जैसे आप उसके नाम से जाहिर होता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, यानी कम्युनिटी मेडिसिन। मतलब हम जो है वो इलाज के ऊपर इतना ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं
0: जी।
1: और इसकी एक मिसाल मैं आपको खुद से दूंगी कि कहां से मैंने अपना योगा स्टार्ट किया। पहले तो जैसे आपने बताया अभी कि योगा कहां से, क्या मायने में, एक संस्कृत वर्ड है ये, 5000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था
0: जी।
1: और फिर इसके माने यूज के माने यूनिटी के है, यूज के माने ज्वाइन करने के हैं, आप किस तरह से इसको जो है आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात है, जैसे वो आप पहले बता भी चुके हैं कि इसमें जो बात है वो है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आपको माइंड को भी उसके अंदर जो है वो लेना पड़ेगा, कि उसको अंदर जो है माइंड के साथ साथ अगर आप अपने ब्रेथ को भी ले लेंगे तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक परफेक्ट योगा जो है वो कहला सकता है। और उससे जो है वो काफी जो है वो फायदा किसी को भी जो है वो हासिल हो सकता है, चाहे माइंड की बात करें, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें, चाहे हम ब्रीदिंग की बात करें। तो इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे हम प्रॉपर एक्सरसाइज, जिसे हम आसन्स बोलते हैं, आसनास बोलते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं, या फिर हम प्रॉपर रिलैक्सेशन बोलते हैं जिसे हम शव आसन बोलते हैं, या हमें उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट भी हमें कौन सी लेनी है, क्या है, वो भी इसका जुज्व है। और सबसे बड़ी बात कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है वो चीजें जो है लेनी है। आप ये बात मानेंगे कि नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है आदमी इसमें। हमें क्या करना है, योगा हमें बताता है कि कैसे लेट गो, कैसे हम किसी चीज को, हम किसको कैसे थैंक यू बोल सकते हैं, कैसे चीजों को हम जो है वो माफ कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए से हम ये जो है कर सकते हैं। अगर हम कहें प्रॉपर आसनास की बात, तो मतलब प्रॉपर आसना हमें बताता है कि हम बॉडी को फिजिकली कैसे फ्लेक्सिबल जो है वो कर सकते हैं, आपकी कैसे हम अपने जॉइंट्स को लुब्रिकेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने जॉइंट्स की जो है वो ऑयलिंग जो है वो कर सकते हैं, और कैसे अगर ऑयलिंग होगी हमारा लुब्रिकेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्कुलेशन भी बॉडी का होगा, हमारे जो ऑक्सीजन सारे हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ब्रेन को वो अच्छी तरह से पहुंचेगी, और जाहिर है आप जो है वो फ्लेक्सिबल जो है वो किसी भी एज के अंदर जो है रह सकते हैं।
0: योगा की अगर हम बात करते हैं कि आपने ये सारी चीजें बताई, लेकिन योगा करने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे जाहिर सी बात है उसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं, कि जिन चीजों को हम फायदा समझ के कर रहे हैं उसको अगर हम अलग वक्तों में करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि योगा जो है, योगा का वक्त क्या है और कौन सा योगा हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए फायदेमंद है।
1: देखिए, अगर मैं कहूं तो जैसे आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हम किसी वॉक के लिए भी करते हैं या योगा के लिए भी करते हैं, तो मॉर्निंग का टाइम हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सही होता है। इंसान सो के उठता है, रिलैक्स्ड होता है, बॉडी भी रिलैक्स्ड होती है, तो वो जो है वो बेहतरीन टाइम होता है। खाने के बाद हम योगा को बिल्कुल मना करते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए, जबकि हमारा मैदा जो है वो पूरा भरा हुआ हो। तो कोई भी एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, आपको मॉर्निंग आवर्स में के अंदर जो करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपकी नाइट शिफ्ट हो ना कुछ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। योगा में नुकसान को ही नहीं है, कभी भी किसी टाइम भी करने में कोई भी नुकसान नहीं है। ये हमें अपने दिल से जो है वो निकालना होगा, कभी भी करेंगे आप उसको जो है वो फायदा ही होगा। अब ये डिपेंड करता है आप।

0: आपने कौन सी कितनी रिग्रस एक्सरसाइज करी है, आपने अपने एज के हिसाब से करी है, आपने मौसम के हिसाब से करी है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है।
1: देखिए इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर आदमी अपने आप में परेशान है, और कमाल ये है कि आज के इस दौर में आदमी क्यों परेशान है उसको खुद पता नहीं है कि क्यों परेशान है। लेकिन योगा ने कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं, कुछ आसन ऐसे हैं योगा के जो आपकी इन परेशानियों को दूर करता है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या कौन से ऐसे आसन को और कब करना चाहिए?
0: देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग का टाइम है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं वो खुदा का नाम लेके करते हैं। अब कोई भी रिलीजन में किसी में हो कुछ हो, हम जो 2 मिनट के लिए बैठते हैं और अपने उस खुदा को याद करते हैं जिसने हमें ये बनाया और हमें इतनी एबिलिटी दी कि हम ये कर सकते हैं सब है। उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम एक सिंपल वॉक से स्टार्ट करते हैं, और हमें एक बात मैं बता दूं कि हमें ये नहीं कि हमें वॉक करने के लिए मेरे घर के बाहर तो जगह नहीं है, मैं जा नहीं सकती है, गर्मी है कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक थोड़ी सी जगह ही चाहिए। आपके डाइनिंग टेबल के पास हो सकती है, आपके बेडरूम में हो सकती है, आपके स्टडी रूम में हो सकती है, हमें बस एक थोड़ी जगह चाहिए। हमें वॉक करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए, हम एक जगह खड़े होके भी 5 से 7 मिनट तक जो है वो वॉक कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी उसके आगे करने के लिए जो है वो यूज टू हो जाए कोई भी आसन करने के लिए।
1: बिल्कुल ठीक है आपने। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम जैसे नौजवान हैं, बच्चे भी हैं, वो परेशान है, और मैंने वही कहा कि वो परेशान है, क्यों परेशान है उनको खुद भी पता नहीं है। तो इन चीजों से बचने के लिए कहा जाता है कि योगा कीजिए, तो कोई कौन सा ऐसा आसन है जिसको हम करें तो ये सारी चीजें हमारी दूर हो जाए?
0: देखिए स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ, तो सबसे अच्छा प्राणायाम जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं वो सबसे बेस्ट होती है। इवन देखा गया है कि अगर बिल्कुल नींद भी नहीं आती है, अगर आप 10 मिनट भी ब्रीदिंग करके आप सो जाओ तो आपको बहुत अच्छी जो है वो नींद आ जाएगी। आप सिंपल कुछ नहीं कर सकते, हम लोम विलोम कर सकते हैं कि आप जो है एक नोस्टिल को आप बंद करेंगे और दूसरी नोस्टिल से आप जो है वो सांस लेंगे, और फिर जो है वो पहले जैसे अगर आपने लेफ्ट से लिया तो आप जो है वो राइट से उसको निकालेंगे, फिर इनहेल करेंगे राइट से और फिर लेफ्ट से निकालेंगे, ये आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको बहुत सारा भस्त्रिका है, आपको बॉक्स ब्रीदिंग है कि आपको सांस लेना है और फिर उसको सांस को होल्ड करना है। आप जितनी देर तक भी होल्ड सकते हैं आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और उसके बाद आपने उसको एक्सहेल करना है और उसके बाद भी आपको उसको होल्ड करना है
1: जी।
0: फिर आप ये जो है वो कर सकते हैं, आप 10 मिनट जो है वो ये कर सकते हैं। फिर आप भस्त्रिका है जिसमें आपको जो है वो हम लोग मना करते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह होते हैं उनके लिए हम मना करते हैं कि आपको बहुत तेजी के सांस साथ लेना है और फिर छोड़ना है, जैसे मैं बता देते इस तरह से जो है वो करना है। तो जितने भी प्राणायाम है, जितनी भी एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी की सारी हमारी एंग्जाइटी को, हमारे मेंटल स्ट्रेस को कहीं ना कहीं जो है वो कम जो है वो करती है, उसको जो है रिड्यूस करती है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब एक चीज और है कि आज के दौर की अगर हम बात करें, वही फिर आ जाता है कि भागती दौड़ती जिंदगी में जब हम भाग रहे हैं अपने हदफ के पीछे भागते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारा हदफ क्या है, उस हदफ के पीछे भागते जा रहे हैं, तो इसमें 2 चीजें हमारे सामने आती है। एक सबसे बड़ी चीज है कि नींद की कमी होती है, हम सो नहीं पाते हैं, और शायद नींद की कमी होने की वजह से हम जो है कब्ज के शिकार हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हमारे जिस्म से हमारी ताकत को भी खत्म कर देता है, हमारे चेहरे से भी नूर को खत्म कर देता है, हमारे चेहरे से भी रौनक खत्म हो जाती है, तो इसके लिए कुछ है क्या?
0: देखिए ये तो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि आज सेकंड जो है वो पेशेंट है मेरे पास वही आता है, और यंगर जनरेशन जो 22 साल के हैं वो बताते हैं
1: जी।
0: प्रॉब्लम डिजिटल, आप सब सोएंगे आप देर से तो आप जागेंगे जो है वो देर से, ठीक है। अच्छा मैंने जो देखा है 80%, मैं आपको बता रही हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो पेशेंट्स का, 80% 11 बजे के बाद जो है वो डिनर करते हैं। अच्छा ठीक है, जिनकी डायबिटीज है, कुछ है, कोई वर्क प्रॉब्लम है तो अदरवाइज, लेकिन लोगों ने रूटीन बना रखा है कि वो देर से जो है वो खाना खाएंगे। देखिए योग में भी है, सब में भी है, आपको अर्ली डिनर करना चाहिए, अर्ली डिनर। मैं खुद ही गए 6 से 7 बजे के बीच में मेरा अर्ली डिनर जो है वो हो जाता है, और डिनर जो है वो लाइट होना चाहिए। सोने में और खाने में रात के में कम से कम 4 घंटे का जो है फर्क रहना चाहिए। हम रात में बहुत हैवी नहीं ले लेते हैं, हम रात में जो है वो बहुत ज्यादा कोई जंक फूड वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अब आप देखिए सिर्फ योग ही नहीं है, आप मैंने बताया योग के अंदर डाइट भी है। अब उसके अंदर डाइट के अंदर अब आप पानी कितना पीते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा जो है वो कॉज है कि आप कितने लीटर पानी पूरे दिन में आप पीते हैं, तो आप पानी जो बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, नहीं कराएंगे, तो 3। और आपकी डाइट क्या है, आपके अंदर

0: है, ये है वो है, तो हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। ये देखकर हमारे पास राहत बचता है। तमाम हकीमों ने, डॉक्टरों ने और वैद्य ने और योगा के जो टीचर हैं, सभी कहते हैं कि रात में ना खाने का, और वही एक वक्त में हम खाना खाते हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज है या कोई ऐसा योगा या कोई ऐसा तरीका जिससे हम अपनी चीजों को, अपनी ख्वाहिशों की तकमील भी कर लें और अपनी सेहत को भी बरकरार रखें?
1: देखिए, आपके सामने जिंदा मिसाल मौजूद है। मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरा टाइम 9 to 5 है और मुझे घर आते आते 6 बज जाते हैं। लेकिन आप मेरी बॉडी, आप जिस तरह से करेंगे ना, आपकी बॉडी इसी तरह से अडेप्ट कर लेगी उन चीजों को। ठीक है,
0: ये आप बता रही थी, अपने बारे में मिसाल दे रही थी कि आप अपनी मिसाल खुद हैं, तो वाकई मैं आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे जो ताजगी है, जो नूर है, वाकई देखने में लग रहा है कि आप चीजों को संभाल के रखा हुआ है, अपनी सेहत को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन हम लोग इसको कैसे करें, ये हम आम इंसान की, या हम जैसे लोग जो ऑफिस में जाते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि बिजी बताते हैं, बहुत ज्यादा काम करने वाले दिखाते हैं, और इस चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते हैं।
1: देखिए, खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बताया है
0: जी।
1: ठीक है, आप ये मानेंगे कि योगा के ऊपर हम इतना इंफेसिस कर रहे हैं, ये क्या है, सिर्फ एक माइंड गेम है
0: जी।
1: आप अपने माइंड को जिस तरह डाइवर्ट करेंगे, आप उसी तरह से हो जाएगा। अगर आप बार बार ये सोच लगे कि मुझे भूख लग रही है, जबकि आपका पेट भरा हुआ है, 10 मिनट के बाद आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी बॉडी का, आप जैसे आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करेंगे, जैसे आप अपनी बॉडी को कहेंगे कि ये हो रहा है, बॉडी का वही ऑर्गन, वही टिश्यू उसी तरह से जो है वो काम करना शुरू होता है। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि नमाज पढ़ने से कहते हैं कि अगर 40 दिन तक पढ़ते रहो तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। 40 दिन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप उसकी रोज करना स्टार्ट करो तो वो फिर हैबिट के अंदर आ जाता है। यही सारी चीज हर चीज में है, चाहे वो डाइट के अंदर हो, चाहे वो एक्सरसाइज के अंदर हो, चाहे वो योगा के अंदर हो, किसी चीज के अंदर भी हो। तो इसी तरह से अगर आपने अपने माइंड को करना शुरू कर दिया, मैं बताती हूँ, मैं संडे तक में भी जो है वो योगा की जो है नहीं करती। लोग बाग कहते हैं कि नहीं, आज संडे है, मैं वर्किंग हुई कुछ, मगर वो मेरे एक माइंड के अंदर आ गया है और मुझे कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है उठने के लिए। मुझे पता है कि ये मेरी योगा का टाइम है और मुझे उस टाइम पे योगा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो मुझे इस उम्र में, आई एम 64 ईयर्स, ना तो मुझे डायबिटीज है, ना मुझे हाइपरटेंशन है। तो हर एक, फिर वही मैं बता रही हूँ कि एक सारी चीजें मिलती है इसके अंदर। वहां आपके पॉजिटिव थिंकिंग भी मिलती है, वहां आपका डाइट भी मिलता है, वहां आपका एक्सरसाइज भी मिलती है, और आप कितने एक्टिव रह रहे हो ये तो सब आपके ऊपर डिपेंड करके रहता है ना। कि दो लोग हैं अगर और दोनों को फीवर है 100 है, तो एक कहता है कि नहीं मुझे तो बहुत बीमार हूं, मैं तो सिर्फ आज लेटूंगा आराम करूंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं एक टेबलेट खा के और मैं काम पे चला जाऊंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्योंकि आप खुद खातून हैं, तो हमारी ख्वातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या बताएंगी कि किस तरीके से वो अपने खानदारी में योगा को शामिल करें और किस तरह से अपने घरेलू जिंदगी में भी उन चीजों को शामिल करें जिससे वो सेहतयाब रह सके।
1: बिल्कुल सही आपने बताया कि फीमेल जो है वो दूसरों का ख्याल रखने में ज्यादा रहती है, अपना जो है वो ख्याल वो कम रखती है। अच्छा, हमें एक एक पर मैं कहती हूँ कि ठीक है, हमें टाइम नहीं है, कहते हैं कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, ये कुछ टाइम नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे मौके हैं कि जहां आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं अगर काफ एक्सरसाइज करना है, काफ जो आजकल जो है वो सेकेंड हार्ट जो है वो कहलाता है। अब आप किचन में खड़ी हुई, आप फॉर एग्जाम्पल दूध गर्म कर रही हैं, आप आराम से अपना काफ रेजेस कर सकती हैं, आप दूध भी कर सकती हैं और आप अपने जो है वो काफ को जो है वो रेस कर सकती हैं और उसमें आपको काफ रेजेस की एक्सरसाइज हो जाएगी। वहीं आप कुछ कर रही हैं,
0: आप एक्सरसाइज कैसे किया जाता है,
1: या आप पंजों के बल पे आपको खड़ा होके और फिर नीचे करना होता है, फिर पंजों के बल खड़े हुए फिर हुए, तो इस तरह से जो आपके काफ मसल्स हैं, जो पिंडलियां जिसे हम पिंडली कहते हैं, वो रेज हो जाएंगी, तो वो उससे आपको एक स्ट्रेच मिलेगा। तो ये आप खाना बना रही हैं, दूध गर्म कर रही हैं, कुछ और काम कर रही हैं, वहां आराम से कर सकती हैं। कुछ शोल्डर एक्सरसाइज हैं, आप खड़े होके किचन में जो है वो शोल्डर एक्सरसाइज जो है वो कर सकती हैं। बहुत सी खाती
0: है, कैसे कर सकते हैं
1: वो, कुछ नहीं, आप खड़े हुए हैं, आपको कंधों को खाली ऊपर नीचे करना है। आप हाथ के बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप हाथ शोल्डर एक्सरसाइज जो है वो कर सकती है, खाली कंधों को ऊपर नीचे नहीं करना, आप नेक को भी जो है वो नेक्सरसाइज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, आपको खाली क्या करना है, नेक को ऊपर नीचे करना है, आपको दाएं बाएं करना है, आपको क्लॉकवाइज करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। और एक मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ कि खासतौर से थायराइड आजकल बहुत कॉमन जो है वो हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको फेस अपना ऊपर करना है और नीचे वाले जबड़े को चलाना है 15 से 20 बार ऐसे करके, ताकि आपका

0: नीचे वाला जबड़ा पूरा हिले, तो ये एक थायराइड के लिए एक बहुत ही अच्छी जो है एक्सरसाइज है। तो ये मैंने बताया कि माइंड गेम है, हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि हम इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जी हाँ, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो खातून है जो घर में रहती हैं, खाना बनाती हैं, वो किचन में भी वो खड़े होकर अपने कंधों की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने गर्दन की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने जबड़े की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने पिंडली और मसल्स की एक्सरसाइज कर सकती हैं, और आपने सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से बताया। इसके अलावा हमारे उन लोगों के लिए जो रेडियो सुन रहे हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो हमें नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए हम अगर कुछ बताना चाहें तो कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं या कौन से ऐसे आसन हैं जिसको वो कर सकते हैं, करने के बाद जो है अपनी सेहत को बेहतर तरीके से रख सकते हैं।
0: देखिए सबसे कॉमन तो आजकल जो है वो डायबिटीज, जिसे हम डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं, तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन जो है वो हो रहा है। हमारे योग में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पेंक्रियास के ऊपर होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अधोनासन आसन, कि आपको जो है एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर जो है बैठने के बाद जो है वो क्रॉस करना होगा, ठीक है, और क्रॉस करने के बाद जिस तरफ आपका घुटना है आपको उसी तरफ अपना मुंह करना होगा। तो उससे क्या होता है कि उस आपका जो घुटने का इफेक्ट है वो आपके पेंक्रियास के ऊपर आता है। फिर यही आपको एक बार राइट साइड से करना होता है, एक बार जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो करना होता है। तो ये एक बेहतरीन आसन है, अर्धनारायण आसन, जो हम डायबिटीज के लोगों को जो है वो खासतौर से बताते हैं।
1: तो डायबिटीज और ज़ियाबितीज की बात कर रहे हैं तो ये मामला तो ऐसा है कि ये बीमारी, अब पहले ये कहा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी हुआ करती थी, यानी जो लोग बहुत आराम पसंद होते थे, आराम तलब होते थे, अमीर से मुराद ये मामला था कि आराम पसंद है, आराम तलब है। लेकिन ये बीमारी देखने में आया कि अब छोटे बच्चों को भी हो रही है और सभी को, ये कोई किसी खास तबके की नहीं रह करके सभी में हो गई, तो इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब?
0: इसकी वजह तो अभी मैंने आपको बताई थी, लाइफस्टाइल आपका किस तरह से। अब देखिए जेनेटिक आ रही है तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आएगी, लेकिन आज की दुनिया में हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है वो सारी बीमारियां उसी की देन है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो दिल की कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो, सारा हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर ही सारा जो है वो डिपेंड होकर रह गया है कि हम जो है देर से सो रहे हैं, देर से हम उठ रहे हैं, खाना हम देर से खा रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हम टीवी के सामने बैठे हैं तो हम पूरा जंक जो है वो खाए जा रहे हैं। तो इससे तो संभलना होगा, या हम डिजिटल पे अपने मोबाइल पे जो है वो जो है दो दो तीन तीन घंटे हैं। और मैं बताऊं योग में बहुत सारी ऐसी आंखों की भी इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ नहीं है, आपको अपनी पलकों को जल्दी जल्दी जल्दी जो झपकना है, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जो है झपकना है, तो उससे आपकी आंखों पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे भारी हो रही है, लेकिन इससे आंखों का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, उसकी रोशनी के ऊपर भी असर होता है। फिर आपको आंखों से एक बार राइट देखना है, एक बार लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट राइट इस तरह से जो है वो देखना है। फिर अपनी आईज को आपने रोटेट करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कुर्सी पे बैठ के भी, अगर आप ऑफिस में है आपका लंच टाइम है, आप 10 मिनट में उसमें बैठ के भी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। या आप अपनी आंखों के सामने आप अपनी एक फिंगर रखेंगे और उस फिंगर को आप जो है वो दूर लेके जाएंगे, उसको बराबर उसको फिंगर को देखेंगे और उसको जो है वो पास लेके जाएंगे, मतलब उसके फिंगर के ऊपर आपका बराबर कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक जो है वो एक्सरसाइज है। इस तरह से जो है बैठ के आप कहीं भी जो है वो कर सकते हैं।
1: तो ये आंख के साथ साथ दिमाग के लिए भी है।
0: बिल्कुल तो बिल्कुल है। आपका इसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है आपका दिमाग जो है वो एक्टिव हो रहा है इस चीज को कैच करने के लिए।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो दो तीन चीजें आपने बहुत अच्छी बताई जो मेरे लिए भी फायदेमंद है और हमारे सामईन के लिए भी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि योगा तो हो गया, एक्सरसाइज हो गई, उसके अलावा जो है हम आपके पास जाते हैं जब कोई बीमार होता है, यानी हम बीमार होते हैं तो आपके पास जाते हैं, आप हमें दवा जो है सजेस्ट कर देती हैं, दवा बताती हैं, हम उस दवा को खा लेते हैं। लेकिन जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था कि बचाव बेहतर है, दवा से बचाव बेहतर है, तो बचाव के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत ना पड़े? हालांकि डॉक्टर से ये सवाल करना बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि हमें डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, ऐसा क्या हम करें? ऐसा या तो हम खाने पीने में ऐसी कौन सी चीजें लेकर आए, अपने खाने पीने को कैसे हम बेहतर बनाएं, या फिर योगा में हम कैसे योगा को हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें जो हमारे ऊपर बहुत वजन भी ना लगे, यानी गिरा भी ना गुजरे, और हम आसानी के साथ उसको करते चले जाएं, खाने पीने में भी उस बदलाव को हम शामिल कर लें जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े, इलाज के लिए?
0: देखिए जामिया हमदर्द मजीदी यूनानी हॉस्पिटल है, उसके अंदर मैं 2 दिन जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ओपीडीज करती हूँ। मतलब ये है कि मुझे दवाइयों पे बिल्कुल नहीं देना चाहती मैं, उसको कहीं ना कहीं इन्हीं की तरफ लाना चाहती हूँ। सबसे पहले बैठ के मैं हिस्ट्री पूछती हूँ कि आप क्या काम करते हो, आपका कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे उठते हो, आप क्या खाना खाते हो, कितने बजे आप खाना खाते हो, कोई एक्सरसाइज किस तरह से करती, कितना आपको मेंटल स्ट्रेस है, उसी के हिसाब से मैं उसको जो है वो ट्रीट करती हूँ। देखिए 2-3 बातें हैं जो अगर हम यही इंक्लूड कर लेंगे अपनी लाइफ में तो ये मतलब 99% लोग पानी नहीं पीते हैं, इतना पानी एडिक्वेट पानी नहीं पीते हैं जिनको जितनी की उनकी बॉडी को जरूरत होती है हाइड्रेट करने की। उसके बाद उनको गैस्ट्राइटिस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की तो एक खास वो है बीमारी हो रही है। तो ये कि जितना आप ज्यादा पानी पियेंगे उसमें आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होगी, ये अवॉइड करते हैं। अब वो अलग वजह है, कुछ लोग वर्किंग प्लेस में है इसलिए वो करते हैं वो, लेकिन आपको बताना है कि आपको पानी जो है वो ज्यादा जो है वो पीना है। आपको बताना है कि घी तेल का कम इस्तेमाल जो है वो करना है, ज्यादा घी तेल के जैसे आपको पता हमारे यहाँ की जो है वो डिशेज जो है वो काफी उसमें वो होता है, तो आपको घी तेल का जो है वो बहुत से कम का कम जो है वो इस्तेमाल करना है। मैदा का इस्तेमाल आप अपनी जो है वो डाइट में बिल्कुल ना करें, बेकरी प्रोडक्ट का कोई भी इस्तेमाल जो है वो अपनी उसमें ना करें। आपको सिर्फ एक सिंपल डाइट जो है रखनी है, मिलेट्स आपको जो है वो अपनी डाइट के अंदर रखने हैं, जवार बाजरा आजकल जो हो रहा है वो आपको अपनी उसमें रोटी भी खा सकते हैं, आप उसका दलिया भी जो खा सकते हैं, जौ का दलिया बहुत ज्यादा जो है वो मुफीद होता है, बहुत हल्का होता है, ये करना है। और कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लो, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा करके ले लो, ये नहीं कि फिर क्या होता है कि हम एकदम से भूख लगती है और हम ज्यादा खा लेते हैं, या शाम में हमें एकदम से भूख लगती है ज्यादा खा लेते हैं। अगर हम छोटी छोटी स्मॉल फ्रीक्वेंट और वो भी जो है वो जंक नहीं खा के, जैसे हमने अब थोड़ा सा हमने चना खा, काला चना है वो हमने उबाल के खा लिया, या हमने कुछ स्प्राउट्स जो है वो खा लिए, या हमने कुछ ऐसा हेल्दी जो है वेजिटेबल सूप पी लिया, तो अगर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे 2-2 घंटे के बाद, तो हमें वो जो हमें अर्ज जो होती है डिनर के टाइम पे या उसको हम किसी तरह से जो कम जो है वो कर सकते हैं। नट्स का बहुत ज्यादा रोल है, अगर आप कोई बात वॉलनट वगैरह जिसे हम अखरोट कहते हैं ये आप 2-3 भी आप खाएं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी बहुत ज्यादा जो है उसके लिए जो फायदेमंद जो है वो हो सकता है। और रात में ये है कि हल्की गजाएं, बहुत सारे जो है वो अब आपको देखना चाहिए इसमें प्रॉपर प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ये ना चाहो कि उसमें एक्सेसिव कोई शुगर हो। तो एक और सर्टेन एज के बाद 40 साल के बाद आपको शुगर और सॉल्ट का इंटेक तो आपको अपनी लाइफ में कम ही करना होगा आगे एक जिंदगी जो है वो अच्छी जीने के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि आपका सोर्स क्या है, उसके साथ साथ खाने के साथ साथ फिर वही कि पॉजिटिव थिंकिंग। और अगर आप खाना खा रहे हो और बहुत ज्यादा गुस्से में खाना खा रहे हो तो इसका इफेक्ट बॉडी के अंदर अलग होगा, और अगर आप खाना खा रहे हो पॉजिटिव रिलैक्स होके खा रहे हो तो उस खाने का असर आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है होगा।
1: जी डॉक्टर अशर साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। अब आखिर में हमारे लिसनर को कोई पैगाम देना चाहेंगी?
0: देखिए मैं ये कहना चाहूंगी खासतौर से क्योंकि एज ए फीमेल, मैं खुद फीमेल हूँ और मैंने जो है वो योगा जो है करते हुए मुझे 17-18 साल हो गए हैं बराबर, और मैं यही कहूंगी औरतों के लिए कि आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। आप ये मत सोचिए कि हमें टाइम नहीं मिलता, 24 घंटे होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम होता है आपको, फिर जो है आपको जब ख्याल आएगा जब वो टाइम निकल चुका होगा। तो अपनी लाइफ के लिए कम से कम 10 मिनट आप निकाल सकती हैं, वो कहीं भी निकाल सकती हैं, वो किचन में भी निकाल सकती हैं, वो वॉशरूम में भी निकाल सकती हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में भी निकाल सकती हैं, आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। आपसे 10-15 मिनट जो है वो अब बहुत सारे जो है ऑनलाइन जो है इतना आ गया है कि आप देख के जो है वो आपको नहीं आता, ऑनलाइन खोलिए योगा की इतनी क्लासेस है वो आप कर सकते हैं। तो इस सब चीजों पे आप खुद अपना जो है वो ध्यान रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप सही रहेंगी तो आप अपने पूरे परिवार को सही रख सकती हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने योगा के तिब्बी फायदे पर रोशनी डाली। सामईन इकराम, योगा सिर्फ वर्जिश नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है, ये हमें जिस्मानी सेहत, ज़हनी सुकून और रूहानी बालीदगी अता करता है। आइए आज से हम योगा को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने वजूद को हम आहंगी और सुकून की तरफ ले जाएं। चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतजार सैफी ने, तो सामईन इकराम, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपनी मेजबान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण से होगा। ये भाषण भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल उपस्थिति पर केंद्रित होगा। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप होगा। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि विकास की यात्रा में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।
3: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रतिंद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक जितव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन का समय मिल गया है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। ईरान 30 दिन के अंदर होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इस समझौते के अंतर्गत संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल है। इससे इसराइल और हिजबुल्ला से जुड़े सीमा पार तनाव कम हो सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले योग से जुड़ी कई गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमीरात में योग अनौपचारिक समूहों से आगे बढ़कर विद्यालयों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक संस्थानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। ये सूचना हमें मिली है, जानकी देवी सूचित करती हैं कि उनकी पुत्री अंजू, जिसकी उम्र 22 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच है, जिस्म मजबूत और उनको अंतिम बार गली नंबर 7 नई बस्ती आनंद रोड नंदग्राम में देखा गया है। यदि आप अंजू से संबंधित कोई जानकारी या सूचना रखते हैं तो थाना नंदग्राम गाजियाबाद को सूचित करें। श्रीमती ऊषा देवी पत्नी रामचंद्र सूचित करती हैं कि उनकी पुत्री आरती, जिसकी उम्र 27 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 152.4 सेंटीमीटर है, वह 29 अप्रैल 2026 से अपने घर से बिना बताए चली गई है। आरती से संबंधित जानकारी के लिए आप थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है विनोद, पुत्र हरिलाल, निवासी नई बस्ती हरवंश नगर, 3 मई 2026 को आखिरी बार अपने घर पर देखा गया था। विनोद की आयु 28 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 165 सेंटीमीटर है। उसके विषय में कोई सूचना यदि आप रखते हैं तो थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को सूचित करें। थाना नंदग्राम से ही एक सूचना हमें मिली है। श्री नंदलाल सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी श्रीमती पूनम, जिनकी आयु 27 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 4 फुट 5 इंच है और दाहिनी हाथ पर टैटू बना हुआ है, वह लापता है। उनकी सूचना थाना नंदग्राम गाजियाबाद से ली जा सकती है। ये सूचना हमें मिली है अर्जुन पुत्र माता फेर, जो 26 अप्रैल 2026 से अपने घर 83/2 मॉडल टाउन बेस्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से लापता है। अर्जुन की उम्र 39 वर्ष, बदन इकहरा, चेहरा लंबा, कद 5 फुट और करीब चेहरे पर उनके झाइयां हैं। उनके विषय में जानकारी देने वाले को ₹5,000 इनाम दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है राशि, उम्र 8 वर्ष, सामान्य शरीर, कद 3 फुट 4 इंच, वह 30 अप्रैल 2026 से 8 बजे कल्लूपुरा थाना कोतवाली नगर से लापता है। पता है श्रीमती जूली पत्नी रणवीर, ललित का किराए का मकान नंबर 196 कल्लूपुरा अथवा थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को सूचित कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है पूजा कुमारी, अंतिम बार गांव खांचा गुरुग्राम में देखा गया। उनकी उम्र है 18 महीने 5 वर्ष और 14 दिन, रंग गोरा, चेहरा लंबोदरा, शरीर दरमियाना मजबूत, कद 5 फुट है, वह सामान्य परिस्थितियों में घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी थाना सेक्टर 37 गुरुग्राम से प्राप्त की जा सकती है। गुमशुदा लड़की अनन्या पुत्री सतीश कुमार, निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना अमरोट जिला छपरा बिहार, हाल का पता है, किराएदार गांव नरसिंहपुर थाना सेक्टर 37 जिला गुरुग्राम। अनन्या की उम्र 13 वर्ष, वह अंतिम बार 6 अक्टूबर 2025 को देखी गई, कद 5 फुट है। उनके संबंध में कोई सूचना या जानकारी यदि आप रखते हैं तो थाना 37 सेक्टर गुरुग्राम को दी जा सकती है। तो ये थी जानकारी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित।
अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: शमा महफिल में जलती है दीवानों के लिए और ये महफिल सजी है आप जैसे खास मेहमानों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य।
1: और मैं हूँ पारुल। आप सुन रहे हैं युववाणी, आपकी आवाज। दोस्तों, आज की दुनिया दो चीजों के बिना शायद अधूरी सी लगती है, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र हमारी डिजिटल दुनिया को शेप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन, टीम वर्क और रेजिलियंस सिखाते हैं।
0: बिल्कुल पारुल, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों ही फील्ड्स लगातार इवॉल्व हो रही हैं। टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को निरंतर बेटर बनाते जा रहा है
1: और स्पोर्ट्स ह्यूमन कनेक्शन का इम्पोर्टेंस समझाता है। आदित्य, ये दोनों ही फील्ड अलग तो लगते हैं लेकिन एक दूसरे से गहरी तरह जुड़े हैं, है ना?
0: हाँ पारुल, इनफैक्ट ह्यूमन कनेक्शन से याद आया, पारुल मैं अक्सर मेट्रो में जब सफर करता हूँ तो देखता हूँ कि लोग रियल दुनिया की बजाय रियल दुनिया में ज्यादा व्यस्त होते हैं।
1: बिल्कुल आदित्य, लोग अपने मोबाइल से इतने प्यार में हैं कि अगर फोन की बैटरी 1% हो जाए तो दिल की धड़कनें 100% बढ़ जाती हैं। और सोचिए, हम एक ऐसी जनरेशन है जिसके पास दुनिया भर की नॉलेज एक पॉकेट में है, फिर भी हम अक्सर अपने आसपास बैठे इंसान को जानने की कोशिश तक नहीं करते।
0: सही कहा पारुल। तो श्रोताओं, क्यों ना फिर वो दौर वापस ले आए जब हम फोन से दूर और अपनों के ज्यादा करीब थे।
1: हाँ आदित्य, ये जो इंसान की जरूरत एक दूसरे से जुड़ जाने की है, इसे कोई एल्गोरिदम कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सबके दिलों की आवाज बनकर गूंजता है, जो याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ नोटिफिकेशंस में नहीं बल्कि उन लम्हों में है जो सच्चे दिल से जीते हैं।

0: ये गाना मेरे दिल के तो बहुत करीब है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट की, आज की बात से। आदित्य, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे बचपन से दिल के करीब तो था, लेकिन वक्त और जीवन की भागदौड़ में हम कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
1: पारुल, बचपन की बात से तो मुझे सिर्फ बचपन की मस्ती ही याद आती है। दोस्तों के साथ लोगों के घर की घंटी बजा के भागना, फ्रिज का डोर धीरे धीरे बंद करना इस उम्मीद में कि हम लाइट को बंद होते देख सके, या फिर कार्ड गेम्स खेलना, चाहे वो WWE हो या फिर क्रिकेट अटैक्स।
0: वेल, क्लोज इनफ। हमारा आज की बात का विषय है बचपन के खेल कूद और गेम्स। याद है जब हम बचपन में सब आइस एंड वाटर खेला करते थे, हाइड एंड सीक?
1: हाँ हाँ, जैसे ऊंच नीच का पापड़ा, पकड़म पकड़ाई।
0: चेन चेन भी याद है? वाह, वो भी क्या दिन थे।
1: तो हम सब के बचपन की यादें ताजा करने सुनते हैं हमारे बचपन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाना। गाने के बोल हैं छोटा बच्चा जान के।

राजा बादल लेकर उसने रख दिया उसने थोड़ा सा धनिया। मैंने बोला बाबू बने कागज बेच रहे या धनिया, कागज रखो बाजू में धनिये को रखो तराजू में, सुन मेरी बात वो रहा ना काबू में।

Chụp cứu ô gậy của Luna. Xuân rè chùa chùa xuân rè gần nhà.

0: आप सुन रहे हैं युववाणी और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का। मन से माइक्रोफोन तक के इस सेगमेंट में आज हम आपको सुनवाने वाले हैं योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी और संतोष द्विवेदी जी का वार्तालाप।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 21 जून को योग दिवस है और इस योग दिवस के आलोक में हम जुड़ रहे हैं योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ। गोस्वामी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: गोस्वामी जी, योगा कर्मसु कौशलम, इसका वास्तविक अर्थ क्या है और आज के युवाओं के जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
2: योगा कर्मसु कौशलम गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को योग की परिभाषा बता रहे हैं। अर्थात में गीता में योग की तीन परिभाषाएं आती है कि योग क्या है। तो जो कर्म योगी होते हैं, जो काम में विश्वास करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी खाली रह सके। कर्म कैसे किया जाए उसकी आर्ट को, उसकी टेक्निक को भगवान ने गीता बताया है। वो कह रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कि जो योग है वो कर्मों की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम का मतलब है कि कर्म जब आप कर रहे हो तो आप कर्म कर रहे हो और पूरी तरह से अवेयर होकर कर्म कर रहे हो। उसमें फल की इच्छा ना हो, उसमें अहंकार ना हो, आसक्ति ना हो, बस कर्म में पूरी निष्ठा के साथ पूरा स्किलफुल होकर आप उस काम को करते जाएं।
1: जी बिल्कुल। आज हमारी सरकार हो या कोई संगठन हो, सभी इस बात पर एक मत है कि युवा शक्ति भारत को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। राष्ट्र निर्माण में हर कोई अपने अपने तरह से योगदान देता है। अगर युवा शक्ति की बात करें और साथ में इसमें योग को हम जोड़ते हुए देखें, तो योग के माध्यम से राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है, आप क्या कहेंगे?
2: देखो, मन बहुत बिखर रहा है, मन में एक दौड़ है, मन में एक हलचल है, मन में एक चंचलता है। बिखरा हुआ मन किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन सधा हुआ मन किसी भी कार्य को बड़े बेहतर तरीके से कुशलता पूर्वक कर सकता है। आज यदि हम देखें, व्यक्ति इंस्टा पर जब रील में होता है तो कितने देर तक एक रील में वो टिकता है, वो कुछ सेकंड में दूसरी रील की तरफ भागना चाहता है। हमारा मन और बिखरा है और चंचल हो रहा है। ऐसे में योग उस बिखरे हुए मन को साधने में हमारी मदद करता है। हर व्यक्ति एक राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होता है जब वो अपना कर्म पूरी तरह से, अच्छी तरह से, निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ उसको कर्तव्य मानकर करता है। यदि वो योग का अभ्यास करेगा, योग के आसन और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, उसका मन स्वस्थ होगा, मानसिक शांति उसको प्राप्त होगी, भीतर एक हल्कापन होगा और तन में भी एक हल्कापन होगा। जब स्वस्थ तन और मन के साथ व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो वह कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से होगा, सफल तरीके से होगा। और जब हर व्यक्ति इसी भाव के साथ में काम करेंगे, यानी कि योग के अभ्यास से अपने को तैयार होकर जब हम काम करेंगे तो वह एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सहयोगी हो जाएंगे। योग भूमिका बांधता है, योग एक आधार है, एक फाउंडेशन है, आपको निर्माण करता है। योग हमें बल देता है, हमें स्वास्थ्य को बेहतर करता है, हमारे मन को बेहतर करता है, बुद्धि के निर्णयों को बेहतर करता है, हमारी इच्छाओं को, हमारी वासनाओं को, हमारे संस्कारों को एक व्यवस्था देता है, एक संतुलितता देता है। और हम जब संतुलित होते हैं और संतुलन के साथ जब काम करते हैं तो हम राष्ट्र निर्माण में सहयोगी हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और उनके भीतर सकारात्मक सोच को लाने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भूमिका ही आगे राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। सुरक्षित जी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल युग में हर किसी की तरह युवा भी आजकल तनाव का शिकार है, कई बार अवसाद का भी शिकार हो जा रहा है, तो ऐसे में योग कितना बड़ा माध्यम बन सकता है इससे निजात पाने में?
2: देखो, अवसाद जो डिप्रेशन है वो एनर्जी का स्टक हो जाना है, एनर्जी का रुक जाना है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक एनर्जी है, यहाँ सब कुछ एनर्जी है, शरीर के सारे ऑर्गन एक एनर्जी है। एनर्जी जब पूरे शरीर में व्यवस्थित तरीके से कार्य करती है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब एनर्जी अव्यवस्थित हो जाती है, बिखर जाती है, कहीं इकट्ठा हो जाती है, उसकी नोट्स बन जाती, ग्रंथियां बन जाती है, तो शरीर में बीमारी आती है। ऐसे ही मन जब किसी एक विचार को पकड़ लेता है, किसी पास्ट के दुख को पकड़ लेता है और वहां से वो निकल नहीं पाता, तो वो अवसाद का रूप ले लेता है। योग के अभ्यास उसी एनर्जी को फ्री फ्लो करने में मदद करते हैं। इसलिए योग के आसन अलग अलग शरीर की मुद्राएं, अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, जिससे एनर्जी का फ्लो फ्री हो जाए और जहां भी कोई रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाए। इसी के साथ साथ जब आसन के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम के जो अभ्यास है वो एनर्जी को फिर बैलेंस करते हैं। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर से बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास तन और मन के केवल अवसाद ही नहीं, अनेक साध्य और असाध्य रोगों को दूर करने में बहुत ही सहयोगी हो जाते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन पर काम करते हैं।
1: जी बिल्कुल, नशे की आदत से बचना हो या फिर पढ़ाई लिखाई में भटकन से बचना हो, उसमें भी योग की एक बड़ी भूमिका होती है।
2: बिल्कुल, व्यक्तित्व निर्माण में ये सहायक है, यानी कि दिनचर्या को एक व्यवस्था देता है, हमारे कर्मों के प्रति एक अवेयरनेस पैदा करता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, कब सोना है, कैसे व्यवहार करना है, कौन से शब्द रखने हैं, संबंधों में है तो वहां कैसे व्यवहार करना है, ऑफिस में है तो वहां कैसे व्यवहार हो, एक बुद्धिमत्ता डेवलप हो जाती है, एक अवेयरनेस और एक विवेक पैदा हो जाता है योग के अभ्यास से। फिर ऐसे ही है कि जैसे आपके हाथ में टॉर्च हो और आप किसी जंगल में रात जा रहे हैं और टॉर्च के साथ आप चल रहे हैं, तो फिर आपको कितना दूर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास रोशनी है।
1: सुरक्षित जी, जैसे हम देखते हैं कि 2014 के बाद से योग को लेकर के भारत और विश्व में काफी सजगता आई है, योग के महत्व को स्वीकार किया गया है, योग अब लोगों की जीवनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के इस बढ़ते प्रभाव को आप भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में कैसे देखते हैं?
2: भारत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर योग है, अध्यात्म है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ रहना सिखाया है, यहाँ जीना सिखाया है, यहाँ सांस लेना सिखाया है, यहाँ बैठना सिखाया है, यहाँ मन को एकाग्र करना सिखाया है। ये सारी विधाएं योग की विधाएं हैं। ये योग की विधा पूरे विश्व को, मानव जाति को सिखाती है कि जीवन जीना कैसे है। जैसे आप कोई भी एक मिक्सी खरीद के लाते हैं तो उसकी एक मैनुअल बुक साथ में आती है, वो बताती है कि इस मिक्सी को कैसे चलाएं। ये शरीर है, हमें मिला है माता पिता से, लेकिन इसको चलाना कैसे, इंद्रियों का प्रयोग कैसे, मन का प्रयोग कैसे, प्राणों का प्रयोग कैसे, बैठाएं कैसे, कैसे इस जीवन की यात्रा को लेकर चले, वो कौन सिखाता है? योग ने वो सिखाया है। और जब योग ये सिखाता है कि जीवन को कैसे लेकर चले तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। तो भारतीय संस्कृति का एक आधारभूत स्तंभ है। और 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को विश्व पटल पर बहुत ही पुरजोर तरीके से रखा और योगा डे के रूप में यूएनओ ने इसको मोहर लगा दी, तब इसका जो महत्ता है वो घर घर पहुंची है, विश्व के कोने कोने पहुंची है। भारत की पुरातन विद्या है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे विश्व पटल पर रखा गया, और इसी कारण से ये योग ही है जो भारत को विश्व गुरु बनाता है। ये योग ही है जो पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि स्वास्थ्य की बात हो तो भारत, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो तो भारत, और अध्यात्म की बात हो तो भारत, और मुक्त हो जाना चाहते हैं तो भारत में जो योग विद्या है वही आधार है मुक्ति का भी।
1: सुरक्षित जी, एक योगाचार्य के रूप में अगर संक्षेप में आपसे जानना चाहूं कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: पहली बात, भोजन पर ध्यान दें। दूसरी बात, अपनी नींद पर ध्यान दें, अच्छा सोएं, क्योंकि आज व्यक्तियों की नींद कम होती जा रही है क्योंकि मन बिखर रहा है, इसलिए नींद पर ध्यान दें। और तीसरी बात है, रोज योग का अभ्यास करें, आधा घंटा योग के आसन करें, 15 मिनट प्राणायाम का ध्यान का अभ्यास करें और 10-15 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठ जाए, यानी कि 1 घंटा अपने लिए दे दें, 23 घंटे जगत के लिए दे दें, आप पाएंगे वो 1 घंटा ही सिर का ताज बन जाएगा।
1: सुरक्षित गोस्वामी जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: संतोष जी और योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी की इस बातचीत से हमें योग के बारे में कितना जानने को मिला है ना पारुल?
0: बिल्कुल आदित्य, पता है योग दिवस काफी करीब है और उसे 21 जून को मनाया जाएगा।
3: बिल्कुल पारुल, इसी के साथ श्रोताओं लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं इस गाने को।

0: वाह, बहुत ही बढ़िया गाना था ये। स्वागत है श्रोताओं, जिन साथियों ने अभी ट्यूनिंग किया है, आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम, जहां पे अब हम जानेंगे वीकली सेगमेंट में कि साइबर सिक्योरिटी का महत्व क्या है हमारी जिंदगी में।
1: दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छू लिया है।

0: घबराहट में पैसे या निजी जानकारी कभी साझा न करें और परिवार या स्थानीय पुलिस से तुरंत संपर्क करें।
1: सही कहा पारुल, खेल में खिलाड़ी हर गेंद पर प्रतिक्रिया नहीं देता, पहले स्थिति समझता है। ठीक उसी तरह डिजिटल दुनिया में हर लिंक पर क्लिक करना समझदारी नहीं है, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी आज डिजिटल दुनिया की बैकबोन बन चुकी है।
0: लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल्स या ट्रॉफीज तक सीमित नहीं है।
1: मैं हमारे श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरी बार आप कब किसी पार्क में गए थे और सिर्फ खुशी के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या कोई और गेम खेला था?
0: दोस्तों, AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में इस बार भारत की फुटबॉल टीम यानी द ब्लू टाइगर्स दूसरे राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई। ग्रुप ए में भारत तीसरे स्थान पर रहा और इसी के साथ उनका क्वालिफिकेशन सफर यहीं समाप्त हो गया।
1: लेकिन एक दिलचस्प बात है कि टूर्नामेंट में भारतीय मूल के 4 खिलाड़ी अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें शामिल है सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड के, सैमुअल मुत्तुस्वामी DR कॉन्गो के लिए, निशांत वेलुपिल्लई ऑस्ट्रेलिया के लिए और तहसीन मोहम्मद जमशीद कतर के लिए।
0: और अब फुटबॉल के फैंस के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट, ग्लोबल सुपरस्टार शकीरा एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग के साथ वापस आई हैं। उनका नया एंथम दाई दाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल सॉन्ग है, जिसे उन्होंने बर्ना बॉय के साथ परफॉर्म किया है।
1: और सच कहें, जब फीफा और फुटबॉल का नाम आता है तो शकीरा की आवाज अपने आप याद आ जाती है। वक्का वक्का से लेकर आज तक उनकी एनर्जी और वॉइस ने फुटबॉल के जज्बे को एक अलग ही पहचान दी है।
0: बिल्कुल आदित्य, ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाज के बिना वर्ल्ड कप का माहौल अधूरा सा हो। उनकी आवाज स्टेडियम के एक्साइटमेंट, फैंस के इमोशंस और फुटबॉल के जुनून को और भी खास बना देती है।
1: और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत की फुटबॉल टीम भी नए उत्साह के साथ और बड़ी उपलब्धियां हासिल करे।
0: बिल्कुल, जब हम एक्सपीरियंस गेन करने पर फोकस करते हैं तब हमारी जीत पहले ही हो चुकी है। हर गेम हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, डिटर्मिनेशन, होप और एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना आदित्य?
1: बिल्कुल पारुल, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी को अपनाइए, उसे सीखिए, लेकिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालकर स्पोर्ट्स और रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन को भी जगह दीजिए। वो कहते हैं ना, अ हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स अ हेल्दी माइंड, अ हेल्दी माइंड मेक्स सेफ डिजिटल चॉइसेस।
0: इसी खूबसूरत विचार के साथ अब चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

0: कितना फन सॉन्ग था ना श्रोताओं। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, क्विक बज़, जिसमें हम जानेंगे कुछ क्विक अपडेट्स।
1: द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विच ऑफिशियली किक स्टार्टेड ऑन 11th जून एंड द टूर्नामेंट इज हेल्ड इन द यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको दिस टाइम। द टूर्नामेंट विल लास्ट फॉर अराउंड 1.5 मंथ एंड कंक्लूड विद इट्स फाइनल्स हेल्ड ऑन 19th ऑफ जुलाई।
0: Today, in ICC Women's T20 World Cup, the match is between West Indies and Scotland.
1: These were the updates from all around. It's time for a song.

0: अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है टुडे इन हिस्ट्री।
1: दोस्तों, 2021 में हमने अपने एक बहुत ही प्रिय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट को खोया है, मिल्खा सिंह जी। इंडिया के सबसे आइकॉनिक स्प्रिंटर्स में से एक, जिन्होंने पूरी दुनिया में द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं।
0: और पारुल, जो चीज मिल्खा सिंह जी को सिर्फ एक एथलीट से महान इंसान बनाती है, वो उनका दिल था। क्या आप जानते हैं कि जब मिल्खा सिंह जी की फिल्म जिंदगी पर बने भाग मिल्खा भाग तो बनी थी, तो मिल्खा जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी की राइट सिर्फ ₹1 में दिए थे।
1: वाकई आदित्य, मिल्खा सिंह जी की आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी हम सबके बीच हमेशा जिंदा रहेगी। आप सिर्फ एक स्प्रिंटर नहीं थे, आप एक इंस्पिरेशन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया मिल्खा सिंह जी, इंडिया को आप पर नाज है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स दोनों ही हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बस जरूरत है तो सही बैलेंस की। और असली जीत वो सिर्फ ट्रॉफी में नहीं, बल्कि हर नए एक्सपीरियंस और सबक में छुपी होती है।
0: जाते जाते पारुल, मैं हमारे यूथ के लिए एक जावेद साहब की पसंदीदा शायरी सुनाना चाहूंगा कि क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं एक आखिरी गीत के साथ।
1: दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं मैं पारुल और मेरे को होस्ट आदित्य। आशा करते हैं आप खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए। नमस्कार, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए युववाणी।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

कभी अंधेरा। नमस्कार साथियों, आज का दिन यानी कि 18 जून हम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महिलाओं के लिए क्यों है, तो सभी के लिए, परंतु यह दिन हम मना रहे हैं बलिदान दिवस के बारे में। बलिदान दिवस महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष 18 जून को मनाई जाती है। 18 जून 1858 को उन्होंने ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, यह नाम ही अपने आप में एक परिपूर्ण है। हर माँ और हर पापा ये चाहते हैं कि हमारे घर में एक रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो, यानी कि ऐसी लेडी जो कभी किसी से न लड़े, किसी से डरे नहीं, हमेशा लड़ती रहे अपने विरुद्ध उन सब लोगों से जो उनके लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। हर लड़की को अपने अंदर एक झांसी की रानी रखनी होती है, अपने अंदर एक ऐसी ज्वाला भरनी होती है जो हर बुरे नज़र वाले के सामने नज़रों से उसके तीर से उसकी नज़रें निकाल सके। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता मन्नो मोरूपन तांबे चिकनापे अप्पा, इनकी माता का नाम भागीरथी बाई। महारानी के पितामह बलवंत राव की बाजीवर पेशवा के सेना में सेनानायक थे। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनुबाई के नाम से जानी जाती थी। उनका विवाह 1838 गंगाधर राव, जो झांसी के राजा घोषित हुए थे, वे विधुर थे। सन 1850 में मनुबाई का उनसे विवाह हुआ। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रवाहित हुई, लेकिन 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक में निमग्न हो गई। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ ही ना हो सके। 21 नवंबर 1853 को वो चल बसे। यद्यपि महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं, अपना विवेक नहीं खोया उन्होंने। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेज राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हुए, मैं झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी और नगर के राजमहल में निवास करने लगी। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए। सभी में विद्रोह की आग भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने स्वर्णाक्षर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला शारगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपी आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई। समस्त देश में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को कार्यान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हुआ। कानपुर तो 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर हुरूज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया, युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रही। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम चलता रहा। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी,

0: नाना साहब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, सागर के राजा, वानपुर के राजा सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। विजयोल्लास का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थी। यह समय विजय का नहीं था, अपनी शक्ति को सुसंगठित कर अगला कदम उठाने का था। सेनापति सर होरूस अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रही। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्र युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आयु आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गए और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। आज का दिन हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई जैसी हर वीरांगनाओं को यह दिन सुपुर्द करते हैं कि वह अपने अंदर एक झांसी की रानी हमेशा रखे, जिससे कि कोई भी उनके ऊपर आंख न उठा सके। हर लड़की अपने आप में एक झांसी की रानी होनी चाहिए, जिससे कि हर राजा, हर कह सकते हैं कि जो दूर नज़र रखने वाला है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी, वो किसी से नहीं डरी, सारे राजा उसके साथ में थे और यहाँ तक कि जितनी रानियाँ थी जो इसके अगेंस्ट में जो राजा थे उनकी भी रानियाँ उनके साथ थी, क्योंकि उन्हें पता था कि रानी लक्ष्मीबाई एक सही दिशा में कदम उठा रही है। तो हमें भी वही चीज़ करनी चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है और सच्चाई का साथ देना है। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते हैं छोटा सा।
1: जैसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है,
1: अरे कोई रो रहा है। भाई ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है।

0: है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है,
1: अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म हम किसी से कम नहीं कहीं गाना कयाकी की आवाज़ में। ये क्या हो रहा है साथियों, आइए सुनते हैं हम अपने एक साथी साबिर राहत से आज की वार्ता है उनके साथ, झांसी रानी झांसी का स्वतंत्रता आंदोलन योगदान जो हम पहले ही बात कर चुके हैं वो हमें डिटेल में बताएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई किस तरीके से एक वीरांगना थी और उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए क्या क्या स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिए। तो आइए सुनते हैं साबरी जी से ये बातचीत।

रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत का इतिहास वीरों, त्यागियों और राष्ट्रभक्तों की गाथाओं से भरा पड़ा है। जब भी हम वीरता, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की बात करते हैं, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने न केवल अंग्रेजी शासन का साहस पूर्वक सामना किया, बल्कि यह भी

सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प और देश प्रेम के सामने बड़ी शक्ति भी टिक नहीं सकती। मणिकर्णिका तांबे का जन्म वाराणसी में लगभग 1827 या 1828 में हुआ था, जो कि आम तौर पर स्वीकृत वर्ष है। उनका पालन पोषण पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय के घर में हुआ, जिनके उनके पिता सलाहकार थे। एक ब्राह्मण लड़की के लिए मणिकर्णिका का पालन पोषण असामान्य था। पेशवा के दरबार में लड़कों के साथ पली पड़ी उन्होंने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया और तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण हो गई। पेशवा के पुत्र नाना साहब और राव साहब और भतीजे तात्या टोपे ने युवा मणिकर्णिका के साथ प्रशिक्षण लिया। वे बाद में भारतीय विद्रोह में प्रमुख व्यक्ति बने। मणिकर्णिका ने झांसी रियासत के महाराजा गंगाधर राव से विवाह किया और लक्ष्मीबाई नाम धारण किया। विवाह की तिथि 1842 और 1852 बताई जाती है। रानी बनने के बाद उन्होंने महिलाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले उस समय के सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत महिलाओं को सार्वजनिक दृष्टि से छिपा रहना आवश्यक था, और उन्होंने अपने शौर्य अभ्यास को जारी रखा। 1852 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी शेष अवस्था में ही मृत्यु हो गई, और सिंहासन के उत्तराधिकारी को जन्म दिए बिना ही वे जल्द ही विधवा हो गए। स्थापित हिंदू परंपरा के अनुसार अपनी मृत्यु से ठीक पहले महाराजा ने एक 5 वर्षीय बालक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया था। हालांकि भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निरर्थक उत्तराधिकारी के सिद्धांत के अनुसार दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसी सिद्धांत के तहत ब्रिटिश उन रियासतों पर कब्जा कर लेते थे जहां शासक की मृत्यु बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाती थी। इसी के अनुरूप 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और लक्ष्मीबाई की शासक के रूप में मान्यता प्राप्त करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। उस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट को प्रशासनिक मामलों की देखरेख के लिए इस छोटे से राज्य में तैनात किया गया था। युवा रानी ने अंग्रेजों को झांसी सौंपने से इनकार कर दिया, जिन्होंने उन्हें पेंशन भोगी का दर्जा देने की पेशकश की थी। माना जाता है कि उन्होंने घोषणा की थी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। सत्ता से वंचित और झांसी के राजनीतिक जीवन से हाशिए पर धकेल दी गई लक्ष्मीबाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति बढ़ते असंतोष की लहर का हिस्सा बन गई। यह विद्रोह 1857 में मेरठ से शुरू हुआ और उत्तरी भारत में फैलते हुए झांसी तक पहुंच गया। विद्रोहियों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों का नरसंहार किया। लक्ष्मीबाई को झांसी की रीजेंट घोषित किया गया और उन्होंने अपने नाबालिग बेटे की ओर से शासन किया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होकर उन्होंने तेजी से अपनी सेना संगठित की और बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला। पड़ोसी क्षेत्रों के विद्रोहियों उन्हें समर्थन देने के लिए झांसी की ओर बढ़े। जनरल के अधीन जनवरी 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने यू रोज के नेतृत्व में बुंदेलखंड में जवाबी हमला शुरू कर दिया था। महू से आगे बढ़ते हुए रोज ने फरवरी में सागर पर कब्जा कर लिया और फिर मार्च में झांसी की ओर बढ़े।
कंपनी की सेनाओं ने झांसी के

0: किले को घेर लिया और भयंकर युद्ध छिड़ गया। आक्रमणकारी सेनाओं का कड़ा प्रतिरोध करते हुए लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों को पराजित होने और बचाव दल के आने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं किया। एक अन्य विद्रोही नेता तात्या टोपे बेतवा के युद्ध में पराजित हो गया। लक्ष्मीबाई महल के कुछ पहरेदारों के साथ किले से भागने में सफल रही और पूर्व दिशा की ओर बढ़ गई, जहां अन्य विद्रोही उनसे मिल गए। लक्ष्मीबाई की हत्या 17 जून को हुई थी या 18 जून को, इस बारे में अलग अलग मत है। हालांकि भारत में 18 जून को उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया। खजाना और शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया और एक प्रमुख नेता नाना साहब के पेशवा शासक घोषित किया गया। ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद लक्ष्मीबाई ने रोज के ब्रिटिश जवाबी हमले का सामना करने के लिए पूर्व की ओर मोरार की ओर कूच किया। पुरुष के वेश में उन्होंने जून 1858 में एक भयंकर युद्ध लड़ा और कोटा के सैराई के पास युद्ध में शहीद हो गए। उनकी मृत्यु का सटीक कारण अज्ञात है। हो सकता है उन्हें गोली मारी गई हो या तलवार से मार दिया गया हो या दोनों। कहा जाता है कि अंग्रेजों को उनकी मृत्यु की सूचना 2 दिन बाद मिली। जनरल रोज ने कथित तौर पर कहा था, भारतीय विद्रोह से केवल एक ही व्यक्ति का जन्म हुआ था और वह व्यक्ति महिला थी। ग्वालियर की लड़ाई विद्रोह की आखिरी लड़ाई थी, जिसके बाद भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज के हाथ में चला गया। लक्ष्मीबाई साहस का पर्याय बन गई और साहित्य, फिल्म, टेलीविजन और लोकप्रिय संस्कृति में उन्हें सम्मानित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध हिंदी कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान का जीवंत वर्णन करती है। प्रत्येक छंद इस पंक्ति के साथ समाप्त होता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: आप जानते ही होंगे कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
1: 12
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह आता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर्स को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
0: आजाद हिंद फौज के नाम और इसकी सदस्यों को रानी के नाम से जाना जाता था। हमारे देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। यदि हम रानी लक्ष्मीबाई के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज आवश्यकता है कि हम उनके साहस, अनुशासन दे।
5: साथियों, समय हो चला है आपके विदा लेने का। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से कार्यक्रम धीने री पाता।
6: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे जी बात
7: काकी साहब तो कोई बात नहीं आज मिन्ना साल किया बैठा हो
8: काई गरुदा हूँ बेटा भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और भी रोज चीसरो भी कौन
7: बस इतनी सी बात आप सुनो आकाशवाणी के कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया काकी साहब इस कार्यक्रम सुनने से मिलते पशुपालन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान
9: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर
10: धीरेरी बातिया धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने अरखू भाई और
11: बंशी भाई रा
10: मोकला मोकला
11: राम राम
10: राम राम भाई बंशी भाई राम राम
11: राम राम अरखू भाई राम राम
10: देखो सिंजा फड़ी री बेड़ा है और लठ हाथ में लेवड़ो और गमछो कांधे पर टांगेड़ो लगे कठी घूम रहे हो
11: थे तो अरखू भाई सारी बात जानो हो
10: जानो क्यों माथे पसीनो टपक रही है पूछ रहा हो बार बार है कई बात है
11: देखो सा सुबेरी बेड़ा और संजेरी बेड़ा
10: हाँ
11: यानी बी टेमरा आदमी ने थोड़ा टहलना चाहिए ताकि उन्हें सुख है कि शरीर है जो निरोग रहे
10: बिल्कुल सा देखो जे सुबह री बेड़ा है तो भी आप घूमना चाहिए और साथ ही साथ जिका भी आपा हड़का फुलका व्यायाम है योग है वो भी आपा कर लेवा तो शरीर ने आपा निरोगो रहे
11: इन वास्तरी क्या करे कि भाई जिको करे योग उनरो शरीर रहे निरोग
10: निरोग बिल्कुल सा देखो सुबह उठते ही साथे कहीं है आपा देखो तैयार हो जावा और अनुलोम विलोम बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है अगर बिने भी आपा कर लेवानी तो भी आप निरोग रहो सा और आप अगर घर से बाहर निकल 2-3 किलोमीटर घूम लियो तो और ही सोने में सुहागे की बात है सा
11: तो भाई जितो करो नहीं आप शरीर ने दूरो
10: हाँ
11: भाई काम शू करो एक तो
10: हाँ।
11: और एक अपना अगर योग रे माध्यम से बहुत को दूरो को नहीं रहना होवे वो उल्टे रो जो कहीं है कि शरीर ने सोरो रखने रो योग
10: हाँ। तो देखो आपने जीवन रे माने एक आदत डालनी है कि आपने सुबह और सिंजारी बेला घूमने रो जो बखत है वो निकालना है और हल्का फुल्का जिका व्यायाम है वे करना है जे आप कोई रोग विशेष से जुड़ेड़ा हो तो आप जिका भी विशेषज्ञ है सलाह ले पर आपने योग करना है
11: हाँ, कुल मिलार बात आई है कि शरीर जो को है नी उन्होंने कोई न कोई काम रमाने लगाएड़ो रखो
10: हाँ देखो शरीर सु पसीनो निकलना चाहिए पसीने में मेहनत छुपी है
11: और मेहनत सुई देखो सा मिले धन हाँ,
10: बिल्कुल सा तो बने बताओ योग रे साथ है कि आज आप चर्चा किन विषय पर कर सा
11: लोग कागज तो घर घर लिखे है कोई लिखे है कि भाई और रानी खेत रोग कहीं हुए उन बाबत जानकारी दो और एक फाउल पॉक्स चेचक रोग
10: देखो बर्ड फ्लू रे बारे में आयो है
11: अच्छा
10: राम जी लिखी है मुर्गियां में होने वाला रोग
11: मुर्गियां रा प्रमुख रोग अरे रोक थाम रा उपाय
10: वाह वाह ठीक रस्तो बताओ आज विशेषज्ञ जी का बता नाम आप लोग बता दो चौपाल ने बता रहे है राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से बता रहे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आप चौपाल में घनो घनो स्वागत है आपने ने करा
11: राम राम सा
12: राम राम अरकू भाई राम राम बंसी भाई
11: देखो सा आपा कर सा डॉक्टर साहब सुप्रसन्न और डॉक्टर साहब जब जवाब देसी नहीं तो आपा जगह पशुपालक भाई नहीं बे होसी प्रसन्न
10: बिल्कुल
11: आभार पूछी सा तो सेव पहली डॉक्टर साहब मारा पशुपालक ने आप हाँ बताओ कि मुर्गियां माए होने वाला प्रमुख रोग है पर किसे किसे होया करे
12: हाँ बंसी भाई प्रमुख रोग अपने मुर्गियां में मेनली 3 कारक होया करे चाहे मुर्गियां हो पशु हो पक्षी हो क्या तो वायरस हुए क्या बैक्टीरिया हुए क्या प्रोटोजोआ पेरासाइट हुए
11: जी
12: तो वायरस होने वाली मेन पहले मैं बताऊं आपने बीमारियां सब बड़ी बीमारी बर्ड फ्लू जो पूरा वर्ल्ड पूरा राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व त्रसित है बर्ड फ्लू ला रहे 2-4 बार हुए तो लाखों लाखों की संख्या में अपन ने मुर्गियां मारनी पड़ी ताकि मनुष्य में वो रोग नहीं पहुंचे
11: जी
12: दूसरा रानी खेत डिजीज है वो भी बहुत खतरनाक छूतरी बीमारी तीसरो फाउल पॉक्स है चौथो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है जो आपने बार ला रहे कोरोना बीमारी हुई सेम विषय बारी बार बीमारी है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहवे बा मुर्गियां में हो जावे चौथी मर्क्स डिजीज आपने कैंसर हुआ है मनुष्य आदमिया में बस सेम ट्यूमर हो जावे मर्क्स डिजीज में पांचवी गंबोरो डिजीज है लीची रोग है ये सब वायरस होने वाला है दूसरा बैक्टीरिया में होने वाला रोग है इन्फेक्शियस कोराइजा है फाउल कोलेरा है हेजो हुए आपने जी हाँ फाउल कोलेरा हुआ है पुलोरम डिजीज है ई कोलाई है फाउल टाइफाइड है अपने टाइफाइड हुआ जी यहाँ भी टाइफाइड हुआ है ये सब जीवाणुओं बैक्टीरिया में होने वाला बीमारियां है
11: जी
12: तीसरी परजीवों पेरासाइट जो चीचड़ है टिक है माइट है कोक्सीडियोसिस है एस्परजिलोसिस है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये सब प्रोटोजोआ या पेरासाइटों में होने वाली ये प्रमुख बीमारियां मुर्गियों में हुआ।
13: वाह सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आप, घनकरा रोग बताए। पर आज

0: कुछ मुख्य मुख्य रोग पर चर्चा करता। तो सेव पहला डॉक्टर साहब, मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि रानीखेत रोग का कारण लक्षण रोकथाम रा उपाय कई, इन विषय में थोड़ी जानकारी दो सर।
1: रानीखेत डिजीज, अगर रानीखेत नाम ही वास्ते पढ़े होगी, रानीखेत एक जगह है उत्तराखंड में। तो सब पहले बठे भारत में डिजीज आई, आ बीमारी आई, अजीव इरो नाम रानीखेत, भी जगह रे हिसाब हो रानीखेत डिजीज नाम पड़ियो। दूसरो नाम ये बीमारी रो न्यूकैसल डिजीज भी कहवा, न्यूकैसल एक जगह है इंग्लैंड में।
2: अच्छा।
1: तो भारत में रानीखेत में आई, लेकिन सब पहले महामारी रूप बठे न्यूकैसल में आई, इन्हें इरो दूसरो नाम न्यूकैसल डिजीज भी हिसाब राखोड़ो है। तो इमें कहीं है कि सब उम्र री मुर्गिया में हो सके, छोटा चूजा ले बूढ़ी भी मुर्गी तक आ बीमारी हो सके, टर्की में भी बीत रहूं समान रूप हुए। इरो कारक एक मिक्सो वायरस हुआ करे, भी वायरस री वजह आ हुए। इमें इरा मेन लक्षण आ चार तरह री हुए। पहलो विरुलेंट फार्म है, दूसरो मिसोजेनिक फार्म है, तीसरो लेंटोजेनिक फार्म है, और चौथो एसिम्टोमेटिक। तो पहलो विरुलेंट फार्म, इन एशियन टाइप रानीखेत डिजीज भी कहवे, आ बहुत खतरनाक है। इमें 100% 100% मृत्यु निश्चित है, इमें मरे ही मरे मुर्गी, और आ 3-4 दिन तक रहे, और बीरे बाद में कदे कदे एक ही दिन में सगली मुर्गियां मर जावे। इमें लक्षण तेज बुखार हुए और मुर्गियां ने सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुए, मुंह खोल मुर्गियां भी में सांस लेने की कोशिश करें, और अंडा उत्पादन सब भी में कम हो जावे। दूसरी है मिसोजेनिक फार्म, भी ने अमेरिकन टाइप किया करे, भी में मृत्यु थोड़ी कम हुए, कम खतरनाक है, 5-20% तक ही मृत्यु हुए, सांस लेने में कठिनाई हुए, हरिया रंगरा भी में दस्त हुए, तो अंडा उत्पादन में कमी, तो बात ठीक हो सके, 10-20% तक भी मृत्यु हुए, 80% मुर्गियां भी में ठीक हो जावे। तीसरी है लेंटोजेनिक, इमें मृत्यु दर बहुत कम है, वो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुए, लेकिन अंडा उत्पादन में भी कमी हुए, लेकिन वह ठीक हो जावे। चौथी एसिम्टोमेटिक, भी लक्षण दिखे कौन नहीं।
2: अच्छा।
1: पर बड़ी मजेदार बात है कि इमें लक्षण कौन दिखे पर मुर्गी उल्टी चालन लाग जावे।
2: अच्छा।
1: तो भी अपन ठा पड़े के ओ रानी खेतरो लेंटोजेनिक है,
2: रोग है।
1: एसिम्टोमेटिक सिम्टम कौन आ रहा है, इमें भी में खांसी आवे, उल्टी आवे, पर मुर्गी उल्टी चालन लाग जावे तो आपने ठा पड़ जावे आ बीमारी, कदे कदे टांगे ने बीच में माथो देर भी बैठ जावे। तो यूं आपने ठा पड़े कि यह एसिम्टोमेटिक रानी खेत डिजीज है। तो ई रोग रो कोई उपचार नहीं है, जो मेन जो विरुलेंट फॉर्म में बतायो एशियन टाइप, बीरो कोई उपचार नहीं है, बाकी तीनों फॉर्म रो थोड़ा उपचार है, ठीक हो जावे। वैक्सीनेशन इमें जरूर कराना चाहिए, ब्रॉयलर और लेयर में तो 7वें दिन पर जन्मे जीव, 7वें दिन पर, 28वें दिन पर और 10 सप्ताह पर,
2: अच्छा,
1: 3 बार वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, और ब्रॉयलर में सिर्फ 7 दिन पर वैक्सीन करा दो, वो काम चल जाए।
2: तो डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करा कि भी आपने जी जानकारी आप दी उन्हें अपने जगह पशुपालक भाई है वे लाभ उठा सी। अब मैं बात करा डॉक्टर साहब, एक रोग आप बताओ बर्ड फ्लू, जिके सु देखो साहब भारत ही नहीं पूरा जो विश्व है वो भी कहीं है कि इनसु प्रभावित हुए और परेशान है। आप बताओ कि इन बर्ड फ्लू रोग रा लक्षण कारण और उनका रोकथाम रा कई उपाय।
1: जी, बर्ड फ्लू भी एक वायरस होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा वायरस, आपने कोविड में भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही हो, इमें इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, व्यू वो बर्ड फ्लू बीमारी फैले, अभी बहुत खतरनाक बहुत ही संक्रामक बीमारी है, और इमें भी जी रानी खेतों बताई 100% मृत्यु निश्चित, इरो कोई उपचार नहीं है, इमें मुर्गिया ने मार खड्डे में या कोई सुरक्षित रूप में निस्तारित करनी पड़े। और रोग मुर्गिया में और टर्की में मुख्य रूप हुए। ई रोग रा लक्षण है कि अचानक ही खूब संख्या में एक ही दिन में एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे। अपन समझ नहीं आवे यार एक ही दम ही मुर्गियां क्या मरी, पहले कोई लक्षण दिखे को नहीं, एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे, पक्षी सुस्त और बिल्कुल खानो पीनो बंद करे और मरना शुरू हो, तो आ स्थिति फार्म में हो जावे। बर्ड फ्लू रो पक्षी में कहीं सूजन भी आ जावे, जुकाम हो जावे, नाक आंख आमू सब स्त्राव शुरू हो जावे, तो ये सब लक्षण इमो हो जावे, इरो उपचार को नहीं बिल्कुल भी, और मरना शुरू हो जावे, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वैक्सीनेशन इरो उपचार है, वैक्सीनेशन आपने 7-10 दिन में करवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह ले,
0: बिल्कुल नुकसान हुए सर। और अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि गंबोरो रोग कहीं है और इरा उपचार और बचाव क्या कर सका।
1: गंबोरो रोग इरे साइंटिस्ट है एक, बारो नाम हो जूलियन गंबोरो, वे ई रोग ने शुरू में स्टार्टिंग में खोज करी, तो बारे नाम वो गंबोरो रोग नाम पड़ियो, तो मैं साइंटिस्ट री वजह ई बीमारी रो नाम गंबोरो। आ भयंकर छूतदार बीमारी है, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी में, दूसरी तीसरी में, और चूजा में ज्यादा।

0: छोटी उम्र में सामने 2 सप्ताह लेर 15 सप्ताह की उम्र में वो रोग हुए, और तीसरा सप्ताह लेर 7वें सप्ताह में लक्षण बहुत तेजी हुआ हुआ में 3 और 6 सप्ताह की आयु में इनमें एकदम रोग लक्षण जो हुए वे तेजी में प्रकट हुआ। इनमें पक्षी सुस्त हो जावे, भूख री कमी हो जाए, भूख प्यास कम लागे, मारो उत्पादन कम हो जावे, पानी री कमी हो जावे शरीर में, ऐसा लक्षण पंख इमें गंबोरों में पंख भी अव्यवस्थित हो जावे थोड़ा,
1: अच्छा
0: पंख उड़ने में चालने में भी बड़ी तकलीफ हो, पगा में लकवा जिसी स्थिति भी आ जावे। तो है आप पशु चिकित्सक ने जाओ या राजूवास आपने नंबर है टोल फ्री बटे बात करो, इरो इलाज है, पोल्ट्री फार्म भी राजूवास रो है बटे भी आप संपर्क कर सके किसान भाई, तो इरो इलाज है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, 4 वैक्सीन इरे वास्ते है। पहली माइल्ड वैक्सीन है, कम लक्षण आवे तो माइल्ड वैक्सीन लागू हुए, इंटरमीडिएट वैक्सीन हुए, और इरे अलावा इन्वेजिव इंटरवेसिव हुए लेयर और ब्रॉयलर के लिए इन्वेजिव इंटरमीडिएट वैक्सीन, और चौथी हुए हॉट स्ट्रेन वैक्सीन, जो अगर एरिया में आपने प्रोन हुए, कई एरिया ये बीमारी के वास्ते प्रोन हुए तो भी मैं हॉट स्ट्रेन वैक्सीन जरूरी हुआ, चार तरह की वैक्सीन कर इरो बचाव कर सकता।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया तरीके से समझावे नी, तो सवाल भी आपने बढ़िया बढ़िया दिमाग रे मायने आ जावे। तो आगलो सवाल है डॉक्टर साहब, आप सु हो है कि फाउल पॉक्स या चेचक रोग रा लक्षण कहीं होया करे, और इन बाबत टीकाकरण की कई भूमिका हुए, इन बाबत भी जानकारी दो सर।
0: जी हाँ, चेचक आप नाम बतायो, पॉक्स वायरस हूँ वायरा नाम में आ रही होगी, पॉक्स तो पॉक्स वायरस है, चेचक जी में छोटी छोटी पुणसियां, जब मनुष्य में चेचक हुआ तो पुणसियां हो जाए, जी में मुर्गी में छोटी छोटी फुंसियां हो जावे जगह जगह पूरे शरीर पर, कलंगी पर, गलकंबल पर, आखरी पुतलिया माथे और सिर माथे फुंसियां हो जावे, तो वही मेन लक्षण है कि फुंसियां अगर आपने दिखे तो आप समझ जाओगे वो फाउल पॉक्स बीमारी है। इनमें संपर्क भी एक मुर्गी दूसरे मुर्गी में संपर्क में आवे तो भी वो एक दूसरे में फैले, मच्छर या पेरासाइट बारे पर जीवी आरी वजह भी आ बीमारी हो जावे। अब 3 तरह हुए, चर्म रूप मतलब चमड़ी में फैलना,
1: अच्छा।
0: दूसरी हुए मुख रूप, और तीसरी हुए आख्यारो रूप। चर्म रूप में कई हुए कि इमें कलंगी माथे, चेहरे माथे और गर्दन माथे ए फुंसियां चेचकरी चेचकरा दाग हो जावे, गल कंबल पर गुदा पर भी हो जावे, तो इमें हल्का भूरा रंगरा दाना नजर आवे, तो बन देख रहे धीरे धीरे पीला रंगरा एक दो दिन में पीला रंग में बदल जाए, भी वहां पर पहचान हो जावे। दूसरो है मुख रूप, इमें मुंह रे अंदर झिल्ली अंदर गला तक छला और दाना हो जावे, तो वो मुख रूप हुए इरो चेचकरो फाउल पॉक्स। तीसरो है आंख रूप, इमें आंखों पलकाउर स्त्राव शुरू हो जावे, सफेद मवाद भी कई बार निकलन लाग जावे,
1: अच्छा
0: तो वो इरो तीसरो रूप है आंख रूप। ओवरऑल अंडा उत्पादन तीनों ही रूपों में अंडा उत्पादन में कमी आ जावे, आहार प्रति रुचि पक्षीरी कौन रहे, ताप टेम्परेचर गिरो बढ़ जा, बुखार टाइप हो जा और उग्र रूप हो जावे, तो पक्षी मरना भी शुरू हो जावे। इमें भी रोग रो बचाव उपाय है, ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन बीमारी होने पहले वैक्सीनेशन आपने करना होना चाहिए। 6-8 सप्ताह की उम्र में इरो वैक्सीन लगे, वो डॉक्टर साहब संपर्क कर और वैक्सीन लगवानी चाहिए।
2: बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और अब जो बखत है बंसी भाई वो है गीतड़ ले रो।
1: बिल्कुल अंकु भाई
2: है, सुना दू
1: एकदम सर
2: आपसे, सुनो भैया वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भाई अब आप सुनियो भी एक मीठो मीठो सो गीत लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुनें, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: ढीणबेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातें। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर उपाध्याय है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। और आज आप बातचीत करिया मुर्गिया रा प्रमुख रोग रोकथाम रा उपाय विषय पर।
2: डॉक्टर साहब क्या करे कि भाई जीवारी और पशुवारी सुरक्षा बहुत ही जरूरी हो या करे और मैं चाहे किण भी रूप बारे मायने हो या करे, बात करा जैव सुरक्षा री तो मुर्गिया में जैव सुरक्षा रो काई महत्व है, इन बाबत आप जानकारी दे सर।
3: बायो सिक्योरिटी या जैव सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं आप सब पक्षियों रो स्वच्छता रो विशेष ध्यान रखना पड़े, नहीं तो कई तरह रा इन्फेक्शन चूहा अपने पोल्ट्री फार्म में नहीं घुसे, इसका भी विशेष रूप आपने विशेष रूप को ध्यान रखना पड़ी, कोई तरह रो इन्फेक्शन नहीं आवे। अपने जब फार्म डालते हैं नया तो भी टाइम डालना, जब नया जब चूजा खरीद लावा जठों भी तो वीरो भी आपने ध्यान रखना पड़े कि जठों भी आपन ला रहा वो 3 महीना तक या 4-6 महीना तक बैठे कोई बीमारी नहीं आई हुए, इसी जगह ले रहा हूँ। अच्छा। जी वाहन में आ रहे हो वो वाहन भी साफ सुथरो हुए तो ये सब चीजा ध्यान रखना पड़े। अंदर घुसनों पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और फुटपाथ वगैरह आपा अंदर हैंडलर करना वाला वे मास्क वगैरह गम बूट वगैरह वे पैर जावे, ये सब बहुत जरूरी है। तो आऊं बायो सिक्योरिटी जैव सुरक्षा हरी मुर्गी फार्म री जरूरी।
0: बिल्कुल सर, कुल मिलाकर साफ सफाई की भूमिका है महत्वपूर्ण है और चाहे आउन जाऊन जो भी वाहन है।

0: बहुत साहब, जिते भी पशु दड़वे में रहे, विधि भी साफ सफाई रो भी बहुत महत्व है।
1: बीरो बीरो लीटर जो आपा नीचे पिछड़ो हुआ है, बीरो भी बहुत ध्यान रखना हुआ है, साफ सफाई रो बिल्कुल
0: पर
1: जरूरी।
0: अब एक डॉक्टर साहब आप सुमे और पूछना चाहवा कि संतुलित आहार और साफ पानी मुर्गिया रोगा सु बचाव में किन भाग सहायक रहे।
1: संतुलित आहार अपने न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट हमारे राजू आस में भी है, और जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर्स है वह बातचीत कर रही, जब भी आप फार्म डालो पशु फार्म तो वो पूरा प्रोटोकॉल है न्यूट्रिशन रो, चूजाऊ लेर जन्मू लेर और आगे जू जू उम्र बढ़े भी जू, और ब्रॉयलर रो अंडा देवन दी टाइम कहीं आहार रहना चाहिए, क्लाइमेट रे हिसाब भी सर्दी गर्मी में थोड़ो बहुत बदलाव आहार में लानो चाहिए, बारिश रे टाइम में कहीं है बीमारियां तो वो सब जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है हमारे राजूवास विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सको, और नियर जो नजदीक आप रहे पशु चिकित्सक है वहां भी संपर्क कर, और एक प्रोटोकॉल रहते हैं आहार देवा, पेयजल भी बहुत सुरक्षित होना चाहिए, अन्यथा ये बीमारियां सकला पशु मुर्गियों आहार इंसाना मासी आदमी मासी बहुत खतरनाक रूप भी ले लेवे कई बार, तो आहार और पेयजल रो बहुत संतुलित रूप में ध्यान रखना पड़े, ऑल आउट ऑल इन भी एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, मुर्गिया ने एक साथ दो तीन महीना में एक साथ सारी मुर्गिया ने आपने बेच नयो लोट ले आना चाहिए, लंबे टाइम तक मुर्गिया नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी कर बेचा एक टाइम एक साथ सब बेच दो, वो तो ऑल आउट ऑल इन नियम है, और वापस लाना तीन सप्ताह तक खाली रखो, पहले सप्ताह में भी बीरो लीटर चेंज करो, दूसरे सप्ताह में बीरी दीवार सब डिसइंफेक्टेंट साबुन डिटर्जेंट साफ करो, तीसरे सप्ताह में वहां पर कलर वलर कर, तीन सप्ताह बाद दूसरा लीटर लाना चाहिए, ये सब भी ध्यान रखकर।
0: कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऑल इन और ऑल आउट बात अगर आप ध्यान रखा, फिर तीन सप्ताह अपना डॉक्टर साहब बताए, छोटी छोटी बातें हैं पर आप वास्ते बहुत ही महत्व बातें हैं, और इन बातें अगर आप ध्यान रखता तो देखो आप जो इन्वेस्टमेंट पैसों जो लगे अपने आज भुगतान भी होता रहसी, नहीं जाने देखो बीमारी है बड़ी नुकसान दे हुआ करे,
2: और इन नुकसान रो जो बचाव है वो उपचार है।
0: हाँ
2: है, और इन वो क्या करें कि भाई उपचार जो है बचाव जो है वो कौन कर सके जो हो सजग।
0: हाँ,
2: और सजग आदमी जिका करे सवाल।
0: हाँ
2: है, तो देखो सर गौरा भाई है जो कागज में लिख कर भेजे सवाल
0: लिखे है गौरा भाई,
2: गौरा भाई कहे कि भाई जे कोई मुर्गी माए रोग रा लक्षण दिख जावे तो मुर्गी पालक है उन्होंने किसा किसा काम है जिका तुरंत करना चाहिए जल्दी सु ताकि उन्होंने जी मुर्गी है वे बचोड़ी रहे।
0: बढ़िया सवाल है,
1: बहुत बढ़िया सवाल है किसान भाई, इस सवाल रो एक मतलब इनिशियल जवाब हो दू की आपने सब पहले तो जो नजदीकी डॉक्टर है तुरंत आप टेलीफोन नंबर रखो, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो आप फोन नंबर पशु चिकित्सक रहना चाहिए, तुरंत संपर्क करो, आप जो भी लक्षण दिख रहा है तुरंत माने बताओ, और अगर वो डॉक्टर साहब बटे विजिट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पक्षी ने पूरा प्रोटोकॉल साथे मारे बटे ले जाओ, दिखा दो लक्षण और जिया बताओ बिया आप ट्रीटमेंट लो, आप हिसाब कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, आप हिसाब ट्रीटमेंट दो तो गड़बड़ आगे और फैल सके वा बीमारी, तो इसो काम नहीं करनो, तो डॉक्टर साहब संपर्क कर, और राजूवास टोल फ्री नंबर है 1800-180-6624 वहां पर भी आप संपर्क कर सको, और धीनेरी बातें टाइम टाइम देखता रहो तो वहां में भी काफी बातें आप बताओ, ध्यान रखे पशु भाई पशुपालक भाई और मुर्गी पालक तो काफी राहत मिल सी।
2: तो डॉक्टर साहब एक सवाल और दिमाग रे मायने आवे कि टोल फ्री नंबर है उन्हारे मायने कोई रात बरात भी फोन कर सका।
1: बिल्कुल भी तो 24/7 है।
2: अच्छा।
1: लेकिन रात में 9 बजे तक तो हमारे बठे डॉक्टर भी उपलब्ध रहे।
2: अच्छा।
1: फिर बाद में भी कोई इमरजेंसी है तो निश्चित रूप आपने चाहे 12 बजे भी करनी पड़े तो जरूर आपने उपलब्ध रहे सी, 24/7 सेवा उपलब्ध है राजवास की तरफ।
0: घणकरा महाराज का पशुपालक भाई बहन काम में भी लेवे है। ठीक है सर, और अब एक चालती चालती बेला एक डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है कि छोटा और मध्यम तबके रा मुर्गी पालका ने रोग नियंत्रण और रोकथाम रे बाबत आप कई संदेश देना चाहो सा।
1: बिल्कुल साहब, छोटा मुर्गी पालक भी आपने बैक यार्ड पोल्ट्री फार्म हुआ घर रहे पीछे बाड़ा में भी छोटा बड़ा रूप में नहीं कर सके, छोटा रूप में मुर्गी पालन करे तो भी यार इन्वेस्टमेंट आर्थिक रूप इतना सक्षम नहीं हुआ कि बहुत बड़ा स्तर पर, माने वैक्सीनेशन रो जरूर ध्यान रखना चाहिए, पशु चिकित्सक आजकल सरकार फ्री वैक्सीनेशन भी कर रही है तो पशु चिकित्सालय में संपर्क कर और वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, और बीरे अलावा भी अगर कोई बीमारी आ जावे तो तुरंत पशु चिकित्सकों संपर्क कर, और जरूर पशु चिकित्सक होंगे वो आपको उपचार उपलब्ध कराएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, अगर स्वच्छता होगी, खान पान उसका न्यूट्रिशन, अभी आप पूछो पहले मैंने, खान पान और पेयजल मारो स्वच्छ हो सी, एकदम साफ सफाई रहसी और तरीका राखो, तो बीमारी आप पर आवे ही नहीं, तो इसको काम ही नहीं पड़े बीमारी रो, वो आप ध्यान रखो।
0: तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, फिर बारस करो कहते खान पान है और स्वच्छता है, दूसरा ऐसा कि अपा समय समय पर टीकाकरण करा और समय समय पर अपा डॉक्टर साहब से राय लेता रेवा, तो आप जो काम धंधा है वो अच्छो चाली और पशु भी अपा रहा है वह भी स्वस्थ रहसी, और अब जो वक्त है वो इशारों कर दिया है आज्ञा लेवण रो,
2: और मेरी जी की कदर है और सम्मान है वो तो सगला ने करना ही चाहिए।
0: बिल्कुल सर, तो भैया मैं आपने बता दूं, आज आप बातचीत करी ही मुर्गिया रा प्रमुख रोग और रोकथाम रा उपाय इन विषय पर, और आज आपने जानकारी देवन सर पधार्या राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, आप चौपाल में पधार्या, हमारे पशुपालक ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इन सर मैं आपने देवा धन्यवाद और करा
2: राम राम सर।
1: राम राम सर।
0: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति भेनेरी बातें, कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराव सा घणान घणा राम राम सा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: काकी साहब छाछ ले दो तो कोई बात नहीं, पर निंदा कर दिया बैठे हो।
5: काई करू दाबू बेटा, भैंस को दूध भी कौन दियो और फिर जीसो भी कौन।
4: बस इतनी बात, आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे भी बातिया। काकी साहब कार्यक्रम सुनते सुनते पशुपालन से जुड़ी समाधान।
6: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे धीरे बातें।

अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से कार्यक्रम धीनरी पाता। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध हैं। इस समय शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। शाम 6:40 का समय रहेगा जिले की चिट्ठी का, जिसे आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। छह बजकर 45 मिनट पर श्रोता सुन सकते हैं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 9 बजे, जिसे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे राजस्थान दर्शन। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दिल्ली केंद्र से रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी के गोल्डन सिटी चैनल से आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का लुत्फ आप एक बार फिर उठा सकते हैं रात्रि 10:30 पर।

श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम एक बार फिर आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

श्रोताओं, ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। इस समय शाम के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपरता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर है। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं।

बधु बंधप गोसाई मो पर करिए दास की नाई कहीं बेगी जेही

एफएम बैंड 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इसका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण EPOS उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और RPSC ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस प्रोत्साहन वितरण से 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 स्थानों पर होंगे।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, साथ ही खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को मजबूत किया है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 98% खाद्यान्न वितरण EPOS उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश भर में प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हमने वन रेशन कार्ड, तो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे, उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके, डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वर्ष की हज यात्रा को सफलतम बताया है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अगले साल की हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार भारत को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्दी ही 2027 की हज यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत इन सड़कों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अगुवाई में हुई बैठक में राजस्थान सहित 6 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सभी तेल शोधन संयंत्रों में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं और ये संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1 करोड़ 47 लाख LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18,86,00,000 रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, नागौर और दूदू कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से डीडवाना में हुई वर्कशॉप में PhD और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों से कुल कृषि भूमि के कम से कम 10% हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा, जिसे भविष्य में व्यापक स्तर पर विस्तार दिया जा सके। उधर नागौर में आयोजित कार्यशाला में किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की उच्चाधिकार समिति की आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने परियोजना के तहत अधिकारियों को ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आज आयोग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले एक साल में आयोग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी। श्री साहू ने कहा कि आयोग ने परीक्षा प्रणाली की शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 47,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया गया और 10,000 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी गई।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है, जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 DPC की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस DPC के माध्यम से मिला है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों को NEET UG 2026 परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल और अनुचित गतिविधि के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। NTA ने अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 144-16 से मदद ली जा सकती है। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और पार्कों तथा खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगासन करते नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने RAC जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उधर उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी आज जयपुर में अपने आवासीय परिसर में परिजन और सहायकों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्री बैरवा ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे स्वस्थ जीवन शैली का स्थायी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर में कल सुबह सामूहिक योग कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में ये कार्यक्रम होगा। सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। त्याग और सेवा के प्रतीक गुरु अर्जन देव को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं और गुरबाणी तथा शब्द कीर्तन के आयोजन रखे गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की जल सेवा भी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98% खाद्यान्न वितरण EPOS उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और RPSC ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंची लाल ने तैयार किया है। बालोतरा जिले में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार के 22 विभागों की सेवाएं आम जन तक पहुँच रही है। ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। वर्षों से लंबित कई कार्य एक ही स्थान पर पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव इन शिविरों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वे गाँव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। जिले के सभी स्थानीय निकायों में शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। जिले के 8 नगरीय निकायों में नियमित रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा पेंशन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिले में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न तालाबों जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया तथा पूजन के कार्यक्रम हुए। रेवाड़ा तालाब पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया और जल बचाने की शपथ दिलाई। जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी कई ग्राम पंचायतों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बालोतरा के प्राचीन खेड़ मंदिर में भगवान रणछोड़ राय की पूजा की गई। वहीं गुड़ामालानी के स्वामी नारायण मंदिर में राज्य मंत्री के विश्नोई ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी गई। जिले में बदलते कृषि परिदृश्य और भूमि की घटती उर्वरता को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति परिसर बालोतरा में कार्यशाला रखी गई। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण पूरे महीने जिले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर नगर परिक्रमा निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यक्रमों में भाग लिया। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की।

0: विक्षोभ के असर से तेज आंधी और हल्की बारिश हुई है। इससे गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली है। तापमान में कमी आने के बाद किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान खेतों की सफाई कर रहे हैं और अनावश्यक पौधों को हटाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश से पहले खेतों को तैयार किया जा रहा है ताकि समय पर जुताई और बुआई का काम शुरू किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियां फिर से तेज होने लगी हैं और किसान आगामी मौसम की तैयारियों में जुट गए हैं। बालोतरा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली में देश में 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम भेला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ईपीओएस मशीनों करियो चाहियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तरीय होड़ा माए तमगा जीतने वाला 50 खिलाड़ियों ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। और आरपीएससी लारला एक साल माए 47 लाख हूँ बत्ता उम्मीदवार सारू 187 परीक्षावा कराई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत काल करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि पात्र लोगों ने देवेला। इनु नौकरी धंधा रा 15 लाख बत्ता मौका मिलेला। श्रम और रोजगार मंत्रालय री ओर ओ कार्यक्रम नई दिल्ली माए राख्यो जावेला जदका देश भर माए 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम भेला। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार बतायो कि राज्य में यह कार्यक्रम जयपुर समेत 7 रखा जावेला।
2: राजस्थान के करीब 7 पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: केंद्रीय उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि खाद्य सुरक्षा तय करण सारू खेतीबाड़ी री उपज बढ़ावनो और अन्न ने हिफाजत सागे भेड़ो करनो जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम रा स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम रा उद्घाटन जलसा में बोल रहा है। वे कहो कि प्रौद्योगिकी काम लेवनो अन्न पात्र लोगों ताई पुगावन में साफ कोई मजबूत हुई है। श्री जोशी कहो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत करीब 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस मशीन रे जरिए करियो चाहियो है। मंत्री कहो कि तकनीकों अपात्र लोगों ने पिछाण माए मदद मिली है जदक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल आखा देश माए प्रवासी लोगों सारू अन्न मुहैया करावनो तय किन्नो है।
3: हमने वन रेशन कार्ड तो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
1: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू इस साल हुई हज यात्रा ने घनी कामयाब बताई है। वे आज नई दिल्ली में आवता साल रे हज यात्रा री तैयारियां सारू बुलाईची मीटिंग पाछे खबर नवी संसा के बातचीत कर रहा है। रिजिजू बतायो कि इस साल भारत ने हज यात्रा सारू सऊदी अरब रा हज और उमराह मंत्रालय रे ओरू 2 दिया गया। वे बतायो कि सरकार आवता साल रे हज यात्रा सारू नवी नीति रो ऐलान करेला।

0: केंद्र सरकार चालू माली साल माए गावाई हलका माए 26,000 किलोमीटर उम्बत्ती लंबी सड़का बनावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहला रातेत आ सड़का सारू 18,900 करोड़ रुपए उम्बत्ती रकम रखी ची है। ग्रामीण विकास विभाग रा सचिव रोहित कंसल रे सदारत माए हुई मीटिंग माए राजस्थान समेत 6 राज्यों रा अहलकार शामिल भया। देश माए सगड़ा तेल शोधन कारखाना माए कच्चा तेल रा पर्याप्त भंडार मौजूद है और एक कारखाना पूरा बूताऊ काम कर रहा है। पश्चिम एशिया रा मौजूदा हालात रा बारा माए आज नई दिल्ली माए भी अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता माए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा आ जानकारी दीनी। वे बतायो के लाडला 3 दिन माए रसोई गैस री 1,47,00,000 टंकियां ग्राहकां ने दे री जी।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तरीय होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग माए कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी देवन री मंजूरी दीनी है। ये फैसला नौजवाना ने खेलना रा हलका माए आगे बढ़न और प्रदेश माए खेलना रा विकास ने बढ़ावो मिलेला। राज्य माए कृषि उपज मंडी समितियां रो बुनियादी ढांचो मजबूत बनावण सारू मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 18,86,00,000 रुपए रा खर्च वाला विकास रा काम मंजूर कीना है। ये रकम सोजत पलसाना श्रीमाधोपुर बीकानेर नागौर और दुदू कृषि उपज मंडी माए विकास रा काम कराया जावेला। इस आगे यार्ड और संपर्क सड़क बनावण और टूटोड़ी सड़क री मरम्मत रा काम ही कराया जावेला। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय मथे आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला रखी जी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रातेत कृषि विभाग री ओर डीडवाना माए राखी जी कार्यशाला माए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी किसानों खेती री कुल जमीन कमो कम 10% हिस्सा माए प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। नागौर माए भी कार्यशाला माए किसान आयोग रा अध्यक्ष CR चौधरी प्राकृतिक और जैविक खेती माथे जोर देता था का कहो का इनो किसाना री आमदनी माए बढ़ोतरी फै सकेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना रा तहत हरियाली बधावन और जमी हेठ पानी रा लेवल माए सुधार सारू जतन करण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागर मीटिंग रे दौरान बोल रहा है। मुख्य सचिव चालू माली साल री कार्य योजना नई मंजूरी दीनी। वे पौधा रोपण और चरागाह विकास में जुड़िया काम माए स्थानीय और हलका रे अनुकूल प्रजातियां माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA विद्यार्थियों ने उजू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा साफ गोई सागे करावन रो भरोसो दिरायो है। एजेंसी रे मुजब परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करण री कोशिशा ने करड़ाई रोकी जावेला। NTA उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 14416 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आज अजमेर माए आयोग रा मुख्यालय माए खबर नवीसा ने लाडला 1 साल माए आयोग री उपलब्धियां और तकनीकी नवाचारा री जानकारी दीनी। वे कहो के आयोग परीक्षा प्रणाली री साफ कोई बनाई रखण और परीक्षावां टीएम सरकार अवंसारू खास कोशिशा कीनी है। वे बतायो कि एक साल माए 47 लाख बत्ता उम्मीदवार सारू 187 बत्ती परीक्षावा करार 10,000 उम्मीदवार री नौकरी री सिफारिश संबंधित महकमा ने करी जी।
2: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 डीपीसी की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है।
0: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन रा तहत प्रदेश में योग अभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस नु पहली आज जयपुर में मुख्यमंत्री रा रहवास माथे योग अभ्यास कार्यक्रम रखी छियो। इन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आरएसी रा जवाना सागे योग और प्राणायाम रो अभ्यास किनो। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाई जयपुर माए वारा रेवास माथा परिवार वाला और सहायक सागे योगाभ्यास किनो। वे लोगों योग जुड़बारी अरज किनी। बैरवा कहो कि योग न केवल एक दिन ताई सीमित रखन री बजाय स्वस्थ जीवन शैली री बुनियाद बनायो जावनो चाहिए। राजस्थान विधानसभा परिसर में आई काल समारोह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में योग अभ्यास कार्यक्रम रखियो जावेला। राज्य में फेर रही आंधी बारिश पारो उतरियो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 24 घंटा में प्रदेश रा उगनी हल्का में गरज चमक सागे बारिश रा आसार है जबकि आतुई हल्का में कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन बीच आज दोपहर पाछे चूरू झुंझुनू श्रीगंगानगर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिला में तेज अंधड़ सागे बारिश हुई। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओला पड़िया। सिख धर्म रा पांचवां गुरु श्री अर्जन देव जी ने आज वारा शहीदी दिवस रे मौके श्रद्धा भाव सागे याद करिया जा रहा है। त्याग और सेवा रा प्रतीक गुरु अर्जन देव ने शहीदा रा सरताज ही कहा जावे है। इस मौके गुरुद्वारा माए खास दीवान सजाई जिया और गुरबाणी और शब्द कीर्तन रा कार्यक्रम रखी जिया। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली में। देश में 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम फैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ईपीओएस मशीनों करियो जा रियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा में तमगा जीतने वाला 50 खिलाड़ियों ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। आरपीएससी लारला एक साल में 47 लाख बत्ता उम्मीदवार सारू 187 बत्ती परीक्षावा कराई। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
3: FM 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े

0: या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं,
1: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: किसान मणि सोनाला सगले किसान भाइयों, पूजा बहन और राम राम लाल जी भाई। आज मैं देख रहा हूँ कि आंधी आमन सुहा पर तापमान में तो गिरावट आ गई है और अच्छी थोड़ी बारिश भी हुई है, तो मौसम में कैसे चाहिए हमें इतनी गर्मी को नहीं, लेकिन आप और किसान भाइयों और जो भी कार्यक्रम सुन रहे हैं सब लोग, आप सही ऊर्जा आपको रखना चाहिए। आपको बात कर दिया आप और किसान भाइयों से, तो सबसे पहले तो किसान भाइयों वास्ते सबसे बढ़िया एक खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 23वीं किस्त है वो कल यानी कि 20 जून 2026 को जारी हो गया। और ये दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है और पश्चिम बंगाल रे हुगली से डीबीटी के माध्यम से देश भर में लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपया सीधा ट्रांसफर करते हैं। जो होया करे साल भर में करया करे जो वो चीज़ है। जरूरी बात यह हुई कि आप रो नॉम लिस्ट में देखने वास्ते और किस्त रो स्टेटस डाउन में रखने वास्ते थे पीएम किसान ऑफिशियल पोर्टल रो उपयोग करो, ताकि थे आपके बारे में जानकारी पूरी ले सको। और इस बात में एक जरूरी है ई KYC, यह करवानी बहुत जरूरी है ताकि बिना कोई रुकावट के थोड़े आपको पैसों मिल सके। और अगर KYC नहीं करा रही है तो थे नो OTP के जरिए पीएम किसान KYC मत है या बायोमेट्रिक्स के द्वारा जो नजदीक रो CSC सेंटर है वो जाके भी करवा सको। मतलब कहने की बात है KYC बहुत जरूरी है, जो करवा चुका है वो लाभ में है, नहीं करवाई है तो भी हाल की कौन बीती करवा लो ताकि उन्होंने भी बिना रुकावट का पैसा मिल जाए। तो यह तो किसान भाई वास्ते एक खुशी की बात है। और इसके अलावा आप बात कर जाए तो आप जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, हमेशा किसान भाइयों की भलाई के वास्ते और आर्थिक उन्नति के वास्ते कई प्रकार की योजनाओं बनाती रही, कया नया नया अवसर ले आया करे। हाँ भी आप और जो देश का माननीय प्रधानमंत्री जी है वो किसान भाइयों वास्ते 1 जून से लेकर 30 जून तक एक अभियान चलाया है, खेत बचाओ अभियान। जिक्र वो है कि यह जो विशेषज्ञ है और प्रतिनिधि किसान है, प्रगतिशील किसान है और उसके अलावा जो विशेषज्ञ है, कृषि विशेषज्ञ जो जानकार है, वो सब जो है खेत हर एक गांव में जाते और वो जाए करके किसान भाइयों संतुलित खाद का उपयोग करना, नकली पेस्टिसाइड की पहचान करने और साथ में वैज्ञानिक खेती कौकर होगी इन्हें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देते हैं। तो आप और किसान भाई ने आग्रह है, हाथ जोड़ निवेदन है कि ये अभियान से जुड़े, वैज्ञानिक सलाह लेवे और उबेरे अनुसार इस खाद रो उपयोग करें जिसको खाद उपयोग कर रहा है, विशेष रूप से जैविक खाद भी और पड़े और प्राकृतिक खेती नो अपनावे। अब मैं आप बात जब जैविक खाद भी कर ही दी तो आप आगे आप ये बात बते आप ही बात जारी रख दें। तो आप और किसान भाई है हमें लगभग जैविक खादरी और अग्रसर हो रहा है, यानी कि जो परंपरागत खेती है वह ना अपना रहा है, पुराने तरीकों परंपरागत तरीकों ना अपना रहा है। पहले जो पूर्वी खेती होती थी उन्होंने भी अपना रहा है, जो हमें बीच में मोए एक तरह का सोच कहते थे रुकावट आई गई थी, पुराने चीज़ों ने एकदम से ड्रॉप कर दी थी, रोक दी थी और नया नया जो वैज्ञानिक तरीका आएगा तो उन्होंने अपनाया था। लेकिन हमें आपका किसान अच्छा होता रुझान कराया नए तरीकों से पुरानी चीज़ों अप्लाई करना। तो जैविक खाद का उपयोग किसान भाई कर रहा है और जिको किसान भाई जैविक खाद और जैविक खेती भी और अग्रसर हो रहा है तो और वास्ते आप और सरकार है वो भी पूर्वों सहायो दे रही है, सहयोग कर रही है, यानी कि सब्सिडी मिल रही है तो जरूर उन्होंने फायदे उठाना चाहिए। और आप हमेशा ये बात कर दिए कि जैविक खाद की जो फसल है वो हमेशा रासायनिक खाद की फसल से उन्नत होया करे और बढ़िया होगी। अगर बाजार में बेचे तो जैविक खाद की फसल का जो दाम है वो अपन सखरा मिल से बनस्बत रासायनिक खाद है बीजो, वो तो स्वास्थ्य बढ़िया रहते उपयोग करने वालों रो बीजो जमीन रो, क्योंकि आप खेत है जो आप आगामी तक आप आगामी पीढ़ियों ने बीज को अनाज

अत्यंत रस है। पूरी भी स्वास्थ्य भवन वास्ते जैविक खाद और जैविक खेती रो बहुत जरूरी है। तो आप और किसान भाई जी को जैविक खेती से जुड़ रहा है उन्हें बहुत बहुत ही शुभकामनाओं है, और उन्हें आगे भी दूसरे किसान भाइयों ने भी इसे जोड़ना चाहिए, इसका फायदा बताना चाहिए और इन्हों ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक बनाना चाहिए। बढ़िया हो, सही बात है। सही बात है। धीरे धीरे बंजर हो जाता है, सही बात है। जी बिल्कुल, लोग

तो लाल जी भाई हाना सुनियो, आप है राजस्थानी लोकगीत बात कर रहे हैं तो आप और किसान भाइयों को कि भाई आप और को सरकार है हमेशा ही किसान भाइयों और उन्नति के वास्ते प्रयासरत है और ये वास्ते आपको कई बातों भी करी। आगे तो बात कर दिए कि आप और जो किसान भाई है जो फसल ना बेचिया करे तो वो टाइम भी बिचौलियों से बचाने वास्ते या कम दाम मिलन रहे यह सब तकलीफों से बचाने वास्ते जो को सरकार है वो प्रयासरत है और उसके वास्ते अभी एक व्यवस्था करी है जिसका नाम बोलते MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके द्वारा की है कि सरकार द्वारा किसानों रे जो को फसल है उन्हें खरीदन रे वास्ते एक जो खरीदन की प्रक्रिया है उन्हें सुनिश्चित मूल्य प्रदान किया करें और जो सरकार है खरीद ये

0: हिकिड़ो प्राथमिक उद्देश्य आहे कि किसाननि जो बाज़ारि जा उतार चढ़ाव खां बचाइणो, दूसरो बिचोलियो खां बचाइणो और उन एक तय सुधा लाभ पहुचाइणो ताकी उन एक मुफ़्त रक़म मिल सके। होया की करे कि बुआई सां पहले जो है सरकार जे द्वारा विभिन्न फसलों के वास्ते MSP घोषित कर दी जाया करे। आप किसान जो है उन्हें यह ध्यान रखना है कि हर फसल के वास्ते एक अलग अलग एजेंसी है, जो गेहूँ की फसल वास्ते अलग है, जूट रे अलग है, कपास से अलग होते हैं, तो हर फसल के वास्ते अलग अलग एजेंसी निर्धारित थोड़ी होते हैं, उन्हें तो संपर्क करना है। किसानों ने आपकी उपज बेचने वास्ते सरकारी पोर्टल मथे या कृषि कार्यालय मथे या ई मित्र केंद्र मथे ऑनलाइन पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। जो पंजीकरण होड़ो होते वो लाभ मिल सके और जो सरकार द्वारा जो मंडी निर्धारित करोड़ी है तो केथ ये फसल बिकसे उथ उज मंडियों ने मोए सर पहले फसल की पूरी गुणवत्ता की जाँच हो सके, यानी कि नमी कितनी है, साफ सफाई हो सके, ये सब रे बाद में ही फसल खरीदी जाते है और खरीद पूरी होने के बाद में MSP रो जो पूरा पैसो है वो सीधो किसानों के बैंक खाते में जाते, बीच में कोई प्रकार बिचौलिया को नहीं, कोई दलाल को नहीं, यानी कोई भी पैसा गमन हो जावे जारी बात को नहीं है, सीधा किसान भाई ने आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलते। तो किसान भाई वास्ते MSP यानी कि जो इन नाम है न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही उपयोगी है। तो आप आगे की बातचीत जारी रख सो, लेकिन पहले गीत तो पहले सुन सो आपको एक जरूरी संदेश।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

तो लाजी भाई हाने सुने आप राजस्थानी लोकगीत और यह गीत रे समापन रे साथ ही आप कार्यक्रम रे समापन रे समय भी हो गए। तो किसान भाई जैसी कर्ज राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत।

nela quero alô. Lumba, lumba, lumba, meu lumba, lumba, lumba.

bandolero. अजी बेरे लोरी बन जा रहा घर मजे से।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप मुझे अच्छे लगने लगे सुन से ये गीत।
1: तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत को आप सुनेंगे मोहम्मद अजीज कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चालबाज।

मोहब्बत में नाम कर जा, तू मेरा नाम लेके मर जा, यही बस है।

0: किशोला मुझे जिसने रला डाला
1: तेरी बातों ने दीवारें मुझे पागल तेरे मुझे
2: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल की गाई कुछ गजलें।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.85 हर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और फिर न्यूज एट 9। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर दैट एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड।

0: widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिसाल यह है कि सीईओ आर्थर मिश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडाल सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: जन भारत के ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन भारत के ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
0: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका

0: साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: बिना स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर

मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं आशिक हूँ

जिसमें मैं आशिक हूँ पहाड़ों का नजारों का गांवों का इशारों का मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जमा धरती के अनजाने किनारों का मैं आशिक हूँ।

0: रास्ता।
1: मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, निगाहों का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ।

0: मैं आशिक हूँ पहाड़ों का नजारों का गांवों का इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है और अब आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप रात्रि 10 बजे भी सुन सकते हैं

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हमारा फन संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, जाइएगा नहीं, एक बार फिर से फन संगीत कार्यक्रम के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे रात्रि 10:00 बजकर

एक बार फिर से फिल्म संगीत कार्यक्रम के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चला है राजस्थानी लोक संगीत का, तो आइए सुनते हैं लोकगीत।

जा करके थोड़ा झनकार कि जब मैं घर सो निकलूं पार सजा करके थोड़ा झनकार कि जब मैं घर सो निकलूं।

चल दियो उड़ने न्याल। के भारी हिरनी सर की चाल पलट कर कर दियो उड़ने न्याल। कोई जो है

0: अब अच्छे बैठे हो के सगी जी।
1: हाँ जी सगा जी, लुगाया में कटे कुछ आ रहे हो।
0: अरे सगी जी, मैं तो थाने ही ढूंढता फिरा हाँ।
1: सगा जी, ये बूढ़ा सारा हो गया, थाने लाज कोनी आवे।
0: लाज? अरे थाने देखे लाज तो भागी, बरात लेके आया। हाँ सगी जी, बात तो करो। मैं तो लेके आया थारे बारात, सगी जी मासू बात करो। मैं तो लेके आया थारे बारात, सगी जी मासू बात करो। आरात बड़ी रंगीली, आरात बड़ी रंगीली है, थोड़ो थोड़ो साथ करो।

तो लेके आया थारे बारा सगी जी मासूमा।

0: उठ जावण दो
1: मारो घूंघटियो मत काटो धनी मारो रूठ जावे गो
0: अरे रूठ जावण दो रूठ जावण दो।

0: हे खरी खोटी बात ना करो,
1: क्यों ना बात करा बात करा।
0: चली थारी परे न्योड़ी ने ल्याओ, मारे धड़ी की गोद में धरो।
1: ओ थोड़ी लाज करो शर्म करो, लेके आया थारे बारात, सगी जी मासु बात करो।
2: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
3: जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
7: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
7: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, भोजन सभी को प्रिय होता है और भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है, और भोजन अगर स्वादिष्ट हो तो सच में ऊर्जा के साथ साथ हमारे मन को

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
7: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
7: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन

0: कल्याण के।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: वहीं श्रोता सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से कार्यक्रम राजस्थान दर्शन।
1: मेरा ये आमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रही। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।

0: सरला, ये मुंह अंधेरे हाथ में बोतल लेके कहाँ जा रही है?
1: जंगल जा रही हूँ दीदी, और कहाँ? इससे पहले कि दिन निकले उजाला हो, मैं जंगल में जाके आ जाती हूँ।
2: पर तू जंगल
0: क्यों जाती है?
2: तेरे घर में तो शौचालय बना हुआ है ना?
1: बना हुआ तो है दीदी, पर उसमें तो उपले रखे हुए हैं, और उस शौचालय में एक बार शौच के लिए जाने का मतलब है 3 बाल्टी पानी खर्च करना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पानी कितनी दूर से लेकर आती हूँ, अब इतनी मेहनत से लाए गए पानी को इस तरह बेकार में ही थोड़ी उड़ेल दूंगी।
2: बेकार में? अरे बावली, जरा सोच, पानी बचाने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे

0: गांव को मुसीबत में डाल रही है। तुम्हारी बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही।
1: अरे सरला, जरा दिमाग पे जोर डाल कि तेरे मल पे कितनी मक्खियाँ बैठती हैं और वही मक्खियाँ वहाँ से उड़कर कई घरों में जाकर उनके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं और उन चीजों को जब वो लोग खाएंगे तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे?
2: हाय दैया, इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, घर पहुंचकर आज से ही शौचालय के उपले बाहर निकालकर हम सब उसे काम में लेना शुरू कर देंगे।
1: ये हुई ना समझदारी वाली बात।
3: रोज सवेरे बेटी बहुएं खुले में शौच को जाती गली के

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में पहला नगमा हमने लिया है कर्ज फिल्म से। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

चलता नहीं है दिल देखे यारो उस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल देखे यारो उस दिल पे जोर कोई, रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई, लगाओ हो शांति शांति शांति

उधर से आया नहीं अभी तक, उधर से कोई जवाब देखो। बोला कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, बोला कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो आप कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो।

पहली नजर का पहला सलाम लेकर जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर उसका ही नाम लेकर मेरे हजार दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना मेरे हजार दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना।

श्रोताओं, मोहम्मद रफी की आवाज़ में काला बाजार फिल्म से अगला नगमा आपकी खिदमत में पेश है। आवाज़ है मोहम्मद रफी की, गीत है शैलेंद्र का और संगीतकार है SD बर्मन।

मेरा आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया जा।

मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली के उनको तो बुला।

आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी।

0: खोया खोया चा।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है ज्वेल थीफ फिल्म से। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

पाकीजा फिल्म का अगला गीत लता की आवाज में पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट तक। गीतकार है कैफ भोपाली और संगीतकार है गुलाम मोहम्मद।

यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, खानदान फिल्म से।

खानदान फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ को। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत ताजमहल फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से ताजमहल फिल्म का ये गीत।

जाम मीना से गए जुल्फ लहराई जहां हम भी लहरा से गए पूरे मिलती है किसे इसके परवास गए इसके परवास के परवास से गए इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत का कहिए चांदी का बदन सोना।

0: खुशी का शौक हो तो क्या करे कोई,
1: दवाए हिजर दे बीमार तो अच्छा करे कोई,
0: कोई बेवजह कर खाने तो क्यों परवाह करे कोई,
1: इतनी मजबूर है गम का हाल क्यों ऐसा करे कोई,
0: मजा जब है कि तुम
1: मरे हम और तुम पर के तुम पर फूलता फूलता दावा दावा करे कोई, हाँ दावा करे कोई, हाँ
2: के हाल नहीं दीवानों का, ये हाल नहीं दीवानों का, ये हाल नहीं।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना ताजमहल फिल्म से ये गीत। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत उमराव जान फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले ने।

0: जीत जी छोड़ूंगी सैया न डगरिया तुरी जीत जाएगी यूही सारी उमरिया मोरी।
1: श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हमारा संत संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
3: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।